0: வந்தே மாதரம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी

0: अथ वार्ताः। पश्चिमबंगालस्य नन्दीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत्मतव्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टनचावड़ी आसने एआईएनआरसी दलं स्वकीयं आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचण्डं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनां अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नन्दीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिन्तनात् पूर्व नियम निषेधाच्च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां शान्ति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानां अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रे अस्मिन् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः 63-शत नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षा कारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केंद्रीय सचिवालयं समेत्य 45 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियंत्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जन सहभागिता भावना वर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवंत केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् संबोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन एसआईआर इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यंत्राणां ईवीएम प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन संपादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक आपत्तीनां रोधनाय निर्वाचन आयोगेन प्रपत्र सप्त आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचन आयोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इंदौरनगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नेरम 7 मणि। आकाशवाणी चेन्नई।

0: श्रोताओं, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी आपने रुक कर खुद से पूछा है कि मैं कैसा हूँ? या कभी आपने किसी दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली से कहा है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ? डिजिटल दुनिया के इस शोर में जहां हम सब कनेक्टेड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से और अपनों के मन से दूर होते जा रहे हैं, आज का दिन हमें उसी मन की आवाज सुनने और अपनों को समझने का एक बेहद खास मौका देता है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, लेकर आई हूं आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। और आज मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नीना रक्कत।
1: हेलो जया, टुडे इज मेंटल हेल्थ डे एंड जया, आई वुड लाइक टू शेयर अ कोट विद आवर लिसनर्स।
0: जी,
1: मेक योर माइंड वर्क फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। The days you are most uncomfortable are the days you learn most about yourself.
0: बिल्कुल, और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा मानसिक सुकून उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो क्यों ना आज इस खूबसूरत सुबह हम अपनों की बातें बिना किसी जजमेंट के पूरे धैर्य से सुनने का एक छोटा सा प्रयास शुरू करें, और मन के इसी सुकून के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के सफ़र की। रोज़ की तरह आज भी हमारे पिटारे में है देश और दुनिया की ताज़ा तरीन हलचल, आपके महानगरों की धड़कन यानी मेट्रो न्यूज़, मौसम का पूरा हाल, और हाँ, आज का इतिहास का झरोखा तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज सुरों के सरताज जगजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है। सिनेमा के जीनियस गुरुदत्त, एवरग्रीन रेखा जी और मालगुड़ी डेज के रचयिता आर के नारायण जी से जुड़ी बहुत सी खास यादें और कालजयी गीत आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 30 मिनट तक। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर।
1: We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 10th October 2026.
0: बिल्कुल, तो अब शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों के महिला और बाल विकास विभाग से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
1: The ruling Bharatiya Janata Party BJP has swept key by-elections in West Bengal and Assam, while the ruling Tamilaga Vetri Karagam TVK has won two assembly by-polls in Tamil Nadu. In Puducherry, the ruling All India NR Congress AINRC has retained the Tattanchavadi assembly seat. The by-elections for the six seats were held on Tuesday. Prime Minister Narendra Modi has said the Lok Sabha by-election result in Assam's Nagaon and the assembly by-poll results in Nandigram and Rajinagar constituencies of West Bengal once again demonstrate the people's deep-rooted connect with the BJP NDA's agenda of good governance. In a social media post, Mr. Modi congratulated the victorious BJP candidates and appreciated the hard work of party workers. He also congratulated NDA ally AINRC on its victory in Tattanchavadi, Puducherry. The Prime Minister said the man it would give the party added strength as it continues to work tirelessly for the welfare of the people and fulfill the aspirations for a brighter and more prosperous future.
0: बिल्कुल, और आज की प्रमुख खबरों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी एक केंद्र

0: है जहां आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़ी कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपद पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल है। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। उधर दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali in Addis Ababa last night and conveyed the personal greetings of Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Ethiopia bilateral cooperation has gained significant momentum in recent years, reflecting shared developmental aspirations and South-South solidarity. Later addressing a gathering, Dr. Jaishankar also called on India and African countries to work together to amplify the concerns of the Global South, saying the impact of global crisis on developing nations needed to be articulated forcefully and could not be ignored by the international community, referring to what he described as a 4F crisis of fuel, food, fertilizers and finance. The External Affairs Minister said conflicts in different parts of the world, along with the COVID-19 pandemic in previous years, had set back the development prospects of the Global South. Dr. Jaishankar also addressed a gathering at Adwa Memorial Museum in Addis Ababa, where he spoke on the Indian-Africa partnership.
0: And now, let's talk about some news. First of all, we have a news उस खेल की जो हर भारतीय के रग रग में बसता है, यानी कि क्रिकेट। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है और 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था।
1: India's Putul Sonowal has created history by assuring the country of its first ever medal at the World Bowls Champions of Champions in Barham, Australia. The 43-year-old from Assam achieved the milestone by reaching the semi-finals of the men's singles event. Sonowal defeated Singapore's Hariman Yuen in the quarterfinals to secure his place in the last four. A member of the Assam police, Sonowal has emerged as one of India's leading lawn bowls players. He won the men's singles gold medal at the 2026 Asian Lawn Bowls Championship, further strengthening his standing on the international stage. Earlier at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, Sonowal defeated Canada's Ryan Bester, a three-time Commonwealth Games medalist and former world outdoor champion in the men's singles events. The match went to a tie break after both players won one set each, with Sonowal emerging victorious.
0: और श्रोताओं, अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो शुरुआत चेन्नई से करें नीना।
1: यस, The Bureau of Indian Standards organized an MSME stakeholder conclave in collaboration with Micro, Small and Medium Enterprises Development and Facilitation Office Chennai yesterday at the MSME DFO Chennai. The conclave was organized as part of BIS's series of awareness and stakeholder outreach initiatives in connection with the celebrations of World Standards Day 2026, with the objective of promoting awareness and encouraging the adoption of Indian standards among MSMEs and the other stakeholders. Delivering the welcome address, Senior Director and Head BIS Chennai, S.D. Dayanand, highlighted the vital role of MSMEs in manufacturing

0: manufacturing, economic growth, employment generation and innovation. He emphasized that adherence to quality requirements and Indian standards enhances competitiveness, builds consumer confidence and improves market access for MSMEs.
1: और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खबरों का। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि दिल्ली आज पूरे देश के केंद्र में है और उससे जुड़ी हमने कुछ खबरें दी हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से आज नई दिल्ली में किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी, कानून लागू करने में आ रही चुनौतियों की पहचान और अगले 10 वर्षों में किशोर न्याय तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
0: Moving on to Bengaluru now, the Karnataka State Tourism Development Corporation, KSTDC, has introduced special tourism services for Mysuru Dasara, including Ambari double-decker bus rides and 7 tour packages covering Mysuru and nearby destinations. Tourism Minister KJ George said the Ambari buses would operate from 10 a.m. to 5 p.m. at 250 rupees per person. Special evening illumination rides will be available at 6:30 p.m., 8 p.m. and 9:30 p.m., priced at 250 rupees for the lower deck and 500 rupees for the upper deck. The 7 tour packages cover destinations including Ooty, Kodagu, Bellur, Halabidu, Shravana Belagola, Shivanasamudra and Nanjagud. The initiative aims to encourage tourists to explore nearby attractions and extend their stay in the region. For bookings, tourists can visit the KSTDC website www.kstdc.co or contact its helpline at 080-4334-4334. And some more from Bengaluru. Karnataka has won the National Award for the highest under construction wind power capacity of 9 gigawatts at Windergy India 2026 held at Chennai Trade Center. The award was presented by Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi to Divya Prabhuji RJ, Managing Director of Karnataka Renewable Energy Development Limited, KREDL.
1: और अब चलते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड यानी कि एमएमआरसी ने पूरे एक्वा लाइन पर यात्री सेवाओं की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक्वा लाइन पासपोर्ट और स्टाम्प ट्रेल का अनावरण किया और एक टाइम कैप्सूल का भी अनावरण किया गया है। टाइम कैप्सूल में मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो के निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों से संबंधित तस्वीरें, यादगार वस्तुएं और रिकॉर्ड रखे गए हैं। इसे 8 अक्टूबर 2036 को खोला जाएगा। स्टाम्प ट्रेल के माध्यम से यात्री और मेट्रो प्रेमी एक्वालाइन के 10 चयनित स्टेशनों पर जाकर विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्मारक स्टाम्प एकत्र कर सकते हैं। एमएमआरसी ने मेट्रो सेवा के निरंतर उपयोग और समर्थन के लिए नियमित यात्रियों को सम्मानित भी किया। मुंबई से एक और खबर है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 अक्टूबर शाम 6 बजे मुंबई के प्रभादेवी स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें गीत के ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान को उजागर किया जाएगा। प्रवेश निःशुल्क है, कुछ सीटें आरक्षित हैं और संस्कृति प्रेमियों को बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
0: And now, Jaya, from Mumbai, it's time to listen to the news of Hyderabad.
1: Okay.
0: Telangana Chief Minister Revant Reddy has said that public transport in the Cure area must be improved to meet future needs. He held a review meeting last night on public transport, road links and use of recycled water. Officials gave a presentation on setting up a personal rapid transit system in crowded parts of Hyderabad. The Chief Minister said it should connect factory areas and busy colonies to metro, MMTS and bus stations. He asked officials to study the best such systems in the world and submit a report. He ordered faster construction of flyovers and underpasses. Work on the flyover from Nagarjun Circle towards Jubilee Check Post must be sped up. Officials were also asked to plan smoother one-way traffic around KBR Park. On recycled water, plans are ready for using 500 million litres a day. The Chief Minister asked that it would be

0: supplied to Bharat Future City, data centers and other industries.
1: और अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की. तो नीना, दुर्गा पूजा सामने आ रहा है. दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे चहेता त्यौहार होता है.
0: Yes.
1: और अब कलश स्थापना आने वाला है, महालया आ रहा है. तो महालया के अवसर पर राज्य सरकार ने वहां पे गंगा सहित विभिन्न नदियों और जल निकायों में लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और निर्बाध तर्पण अनुष्ठान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा और विशेष प्रशासनिक व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं. सुबह 3 बजे से ही घाटों पर गोताखोर, स्पीड बोट, लाइफ जैकेट और बचाव उपकरण तैनात कर दिए गए हैं. साथ ही SDRF और NDRF की टीमें भी अलर्ट पर हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए राज्यव्यापी उपाय किए गए हैं. इस बीच राज्य सरकार ने महालया से शुरू होने वाले एक विशेष उत्सव का भी शुभारंभ करने का निर्णय लिया है. दोपहर में राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रेड रोड से ईडन गार्डन तक चलने वाली एक रैली में भी हिस्सा लेंगे और इसमें बंगाल की समृद्ध लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा. और अब जानते हैं कि महानगरों में मौसम कैसा है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शहर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मुंबई में गर्म और उमस की चेतावनी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. कोलकाता में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और बिजली कड़कने का भी अनुमान है. शहर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
0: Weather news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai, partly cloudy sky with a possibility of rain or thunderstorm. Temperature will range from 26 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Bengaluru's partly cloudy sky. Temperature will range from 20 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. And Hyderabad has partly cloudy sky with haze. Temperature will range from 22 degrees Celsius to 34 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 10 अक्टूबर है और आज ही के दिन
0: In 1756, a British expedition led by Robert Clive sailed from Madras to recapture Calcutta. In 1846, British astronomer William Lassell discovered the natural satellite of Neptune.
1: और 1910 में 10 से 12 अक्टूबर तक वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था. 1954 में फिल्म श्यामची आई को पहला राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया.
0: In 1964, the Summer Olympics officially opened today in Tokyo, Japan. In 1990, Discovery 11, America's 67th manned space mission, returned from space.
1: और साल 1991 में भारत ने विश्व कैरम चैंपियनशिप में टीम खिताब जीता था. 1992 में कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है, वहां हावड़ा से जोड़ने वाले कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने के लिए हुगली नदी पर बने विद्यासागर सेतु को खोला गया और केबल से बने देश के इस सबसे बड़े सेतु के निर्माण में करीब 13 साल लगे.
0: In 1998, Uzma Khan and Nitin Kirtane bagged the women's and men's crowns in the National Tennis Championships in Delhi.
1: और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जहां हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के सिपाहियों का इलाज करते करते प्राण त्याग देने वाले निस्वार्थ सेवक भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ शांताराम कोटणेश को. द्वितीय चीन जापान युद्ध, जो 1937 से 45 के बीच चला, इस दौरान चीन में अपनी सेवाओं के दौरान मात्र 32 साल की उम्र में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटणेश की मृत्यु हो गई थी. उनकी मौत के सालों बाद भी चीन के लोग उनकी निस्वार्थ सेवा और काम के प्रति समर्पण के लिए उन्हें आज भी बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं.
0: क्रिस्टोफर रीव, forever remembered as the man who made us believe a hero could fly. Born in New York City, he rose to fame as the iconic Superman in the late 70s and 80s, but his career stretched far beyond the Cape. With acclaimed performances in films like Somewhere in Time and Remains of the Day, Reeve proved his depth as an actor after a tragic accident.

अब हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा की दिग्गज और हर दिल अजीज अभिनेत्री मनोरमा जी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1000 से अधिक फिल्मों और 5000 से ज्यादा नाटकों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली मनोरमा जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिनेमा में उनके इसी अतुलनीय योगदान को याद करते हुए आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मुथु से ये

आज ही जयंती है भारत के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक आर के नारायण जी की। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी था। आर के नारायण ने हमें ऐसा टीवी सीरियल दिया था जिसको देखने के लिए लोगों ने टीवी तक का जुगाड़ किया था। बता दें कि आर के नारायण ने 80 से 90 के दशक में जन्मे बच्चों को टीवी सीरियल की सहायता से एक कमाल का बचपन दिया था। मालगुडी डेज तो आपको याद ही होगा। मालगुडी डेज आर के नारायण की किताब मालगुडी डेज पर आधारित था। शंकर नाग के निर्देशन पर बने इस शो ने पीढ़ियों को मोहित किया है। आज भी ये अपनी सरल कहानी कहने और बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जाता है।

के फूल को भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म होने का गौरव प्राप्त है। तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज और कैफी आजमी साहब के लिखे बोल आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं।

आज पुण्यतिथि है हिंदी सिनेमा के एक ऐसे जीनियस दूरदर्शी फिल्म निर्माता, निर्देशक और बेमिसाल अभिनेता की, जिन्होंने अपनी गहन कहानी और नवीन तकनीकों से सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त जी की। जब भी हिंदी सिनेमा के क्लासिक दौर की बात आती है तो गुरुदत्त जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनकी फिल्मों को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 1959 में आई उनकी फिल्म कागज

श्रोताओं, शुरू के इस सफर में अब वक्त हो चला है एक ऐसी मखमली और रूहानी आवाज को याद करने का जिसने तन्हाई को भी एक खूबसूरत एहसास में बदल दिया। आज पुण्यतिथि है गजलों की दुनिया के बेताज बादशाह जगजीत सिंह की।

आज जन्मदिन है बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा रेखा का। आज वो लगभग 70 से ऊपर 72 साल की हो गई होंगी, लेकिन उनकी खूबसूरती में अब तक कोई कमी नहीं आई है। उनकी मुस्कान और अदाएं आज भी लोगों का दिल जीत लेती हैं। रेखा की खूबसूरती समय के साथ और भी निखरती जा रही है। रेखा ने अपनी करियर की शुरुआत महज 12 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में किया था। उनकी पहली फिल्म थी तेलुगु फिल्म रंगोला। उन्होंने कई फिल्मों के लिए अवार्ड जीते हैं, लेकिन उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है।

0: श्रद्धाओं, उनके करियर का ग्राफ कई बार ऊंचा हुआ नीचा हुआ, लेकिन उन्होंने अपना स्टेटस हमेशा बरकरार रखा है। 2010 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और नीना को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों

0: पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो GRP के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने CAPF की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से

0: बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवम्बर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

0: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
1: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
0: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
2: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना दयाकल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
0: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम किरकेट्टा।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
4: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
5: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP Grams पोर्टल पर समाधान दीदी।
4: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
5: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
4: सारी शिकायतों का समाधान CP Grams की समाधान दीदी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवि पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை சேலம் ஆர் ஸ்ரீராம் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். பி விட்டலரங்கன் அவர்கள் வயலின், கல்லிடைக்குறிச்சி எஸ் சிவகுமார் அவர்கள் மிருதங்கம்.
1: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य,

0: पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत अमेरिका के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हुर्मुज जलजमरू मध्य पर अमरीका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को सम्मानित किया। इस बीच इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन स्मिथ को उनके कार्यों के सम्मान में इसराइल का नागरिक वीरता राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाई होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Mr. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that Delhi police will take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed today till 6 p.m. These include Janpath, Patel Chowk, Central Secretariat, Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, New Delhi's Seva Teerth and Mandi House. Delhi Traffic Police has also issued an advisory for traffic diversions in various parts of the national capital. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centres to be developed as centres of community participation. He said families living near Anganwadi centres should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. Prime Minister Narendra Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies and rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India who participated in the World Skills Competition.

0: Shanghai 2026 at his residence in New Delhi yesterday.
1: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है. आपके पास क्या है कितनी डिग्रियां हैं उसका अपना महत्व है ही लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल. जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं.
0: All 10 candidates for the Rajya Sabha from Uttar Pradesh, including 8 from Bharatiya Janata Party and 2 from Samajwadi Party, were declared elected unopposed yesterday. Returning Officer Ajit Verma, Special Secretary of Uttar Pradesh Legislative Assembly, confirmed the unopposed election of all 10 candidates. The BJP candidates are Dharampal Singh, Prakash Pal, Shruti Gangwar, Vidya Sagar Sonkar, Priyanka Rawat, Radhakant Ojha, Gopi Krishnan Pandey and Ram Pratap Singh Chauhan. The SP candidates are Ram Gopal Yadav and Dhanraj Parimal Nathwani. The United States has temporarily lifted sanctions on the sale and import of Russian origin diesel fuel until 7th of April 2027, following a conversation between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. The US Treasury Department announced a decision last night authorizing transactions related to the sale, delivery, unloading, and import of Russian diesel fuel, including imports into the United States. Diesel prices have surged globally amid disruptions to fuel supplies. India has warned Pakistan that it will not be deterred by nuclear threats and will deliver a fitting response to any terrorist attack. India's senior advisor to the permanent mission to the UN Conference on Disarmament in Geneva, Anmol Sher Bedi, made the remarks while speaking at the United Nations General Assembly First Committee meeting in New York yesterday. He said India would make no distinction between those who sponsor terrorism and those who mastermind it. India's Putul Sonowal has created history by assuring the country of its first ever medal at the World Bowls Champion of Champions in Barham, Australia. In men's cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in second T20 international in Ranchi last night. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने द्विपक्षीय संबंधों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बातचीत की. भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, वो इस्लामाबाद के परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब देने का संकल्प लिया. अमेरिका ने मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच अगले साल अप्रैल तक वैश्विक बाजारों में रूस के डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाए. संयुक्त अरब अमीरात के शारजा में पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित. और खेल जगत में ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पुतुल सोनोवाल ने विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस में देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया. अब समाचार विस्तार से. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए कल सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ बैठक की. बैठक में भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने वित्त मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और मौजूदा ऊर्जा संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई. उन्होंने ये भी बताया कि श्रीमती सीतारामन ने भारत के विकास और निवेश तथा सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में जानकारी साझा की. भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. हमारे संवाददाता ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही.
3: श्री बेदी ने पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत के

0: बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा, भारत ने आत्मरक्षा में सोच समझकर और लक्षित कार्रवाई की, जिसका उद्देश्य तनाव को बढ़ने से रोकना था। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल सामान्य सरकारी नीति के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। श्री बेदी ने चेतावनी दी कि आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देने के लिए परमाणु धमकियों का इस्तेमाल करने से तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। श्री बेदी ने परमाणु प्रसार को लेकर भी चिंताएं जताई। उन्होंने अब्दुल कादिर खान नेटवर्क के इतिहास का उल्लेख करते हुए देशों से पाकिस्तान के साथ परमाणु और उन्नत सैन्य सहयोग करते ही समय सावधानी बरतने का आग्रह किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात अदिस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हाल के वर्षों में भारत इथियोपिया द्विपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण साझेदारी निभा रहा है, जो विकास आकांक्षाओं और दक्षिण एकजुटता को दर्शाती है। एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अफ्रीकी देशों से वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच अगले साल अप्रैल तक वैश्विक बाजारों में रूस के डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और वैश्विक बाजार में रूसी तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की प्रस्तावित आपूर्ति का विश्व अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने यह टिप्पणी की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा आपूर्ति, यूक्रेन संघर्ष और ईरान की स्थिति पर चर्चा की। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए रूस की इच्छा की पुष्टि की। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रस्तावित आपूर्ति का स्वागत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे डीजल की कीमत कम करने में मदद मिलेगी। रूस के राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष पर शांतिवार्ता फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुष्टि की है कि संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह बंदरगाह में कल पनामा के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर पर ड्रोन हमले में सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी जहाज का प्रबंधन करने वाली कंपनी के संपर्क में है। भारत और लाइबेरिया ने ऐसे हमलों को तत्काल रोकने की संयुक्त अपील की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की जांच में पता चला है कि फ्लाई दुबई की घटना में ओमान के सह पायलट द्वारा सुनियोजित तरीके से आतंकवादी साजिश हुई थी। यूएई के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉ हमाद सैफ अल शमसी ने कल इस घटना की लोक अभियोजन जांच के बारे में जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
2: यूएई की जांच में सामने आया है कि फ्लाई दुबई के ओमानी कोपायलट ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सुसाइड अटैक की योजना बनाई थी। इस हमले को अंजाम देने से पहले उसने रास्ते और एयरपोर्ट की जानकारी लेने के लिए तेल अवीव की दो उड़ानें पहले भी ली थी। 30 सितंबर को उसने कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ मछार पर इमरजेंसी एक्ट से हमला किया। रिटर्न फ्लाइट के एक पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा बार बार खुलते और बंद होते देखा। शक होने पर वह अंदर गए और उन्होंने हमला होते देखा। इसके बाद क्रू और कई पैसेंजर्स ने मिलकर घायल कप्तान को बचाया और आरोपी को काबू में किया। जांच में पता चला कि आरोपी में एक्सट्रीमिज्म के संकेत 2017 से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान दिखने लगे थे। वह एक्सट्रीमिस्ट सामग्री और 9/11 हमलों से प्रभावित था। आरोपी ने कबूल किया कि उसने यह योजना अकेले बनाई थी। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को सम्मानित किया। कैप्टन ने 30 सितंबर को फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 में कथित अपहरण के प्रयास को विफल किया था। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि कैप्टन स्मिथ के साहस और सूझबूझ ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली उड़ान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान बचाने में मदद की। कैप्टन स्मिथ का अबू धाबी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। इस बीच इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने घोषणा की है कि कैप्टन स्मिथ को उनके कार्यों के सम्मान में इसराइल का नागरिक वीरता राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा।

0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी का समर्थन किया है। उन्होंने रामास्वामी के व्यावसायिक अनुभव, रोजगार सृजन की योजनाओं और संपत्ति कर में राहत देने के प्रस्तावों को प्रमुखता से उठाया। ओहायो के लीमा में रिपब्लिकन पार्टी की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री रामास्वामी के जीतने पर निवेश आकर्षित होने, विनिर्माण क्षेत्र को फिर से मजबूती मिलने तथा घरों और व्यवसायों के लिए ऊर्जा लागत कम होने की आशा है। श्री रामास्वामी का गवर्नर पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एमी एक्टन से मुकाबला है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है हिमांशु कांडपाल।
1: भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के हेरिमियन यूएन को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। असम पुलिस में कार्यरत पुतुल ने इस वर्ष एशियाई लॉन बाउल चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता और पूर्व विश्व आउटडोर चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया था। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। वहीं झांसी में आज से सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 29 टीमें भाग ले रही हैं। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने द्विपक्षीय संबंधों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बातचीत की। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब देने का संकल्प लिया। अमेरिका ने मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच अगले साल अप्रैल तक वैश्विक बाजारों में रूस के डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाए। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित। और खेल जगत में, ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पुतुल सोनोवाल ने विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस में देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ஒலி தந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रस्तावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
2: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित।

0: हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाय होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies amid rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India who participated in the World Skills Competition Shanghai 2026 at his residence in New Delhi yesterday.
2: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विश्व में जो नए-नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed till 6 p.m. These include Janpath, Patel Chowk, Central Secretariat, Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, New Delhi, Seva Tirth and Mandi House. Delhi Traffic Police has also issued an advisory for traffic diversion in various parts of the national capital. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

0: ಹಗಲು
1: ಸತ್ತ ಸತ್ತ ಸತ್ತ ಸತ್ತ ಸತ್ತ ಸತ್ತ.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
3: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे, और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है।

0: vision. India slams Pakistan at UN General Assembly for spreading lies and falsehoods about Jammu and Kashmir. And IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जाँच की जा रही है।
2: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
1: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
3: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
1: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

0: पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
4: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट

0: प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ

और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहां से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
1: दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। श्री नवीन ने कहा कि भारत का युवा भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र से जुड़ा है, भारतीय संविधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है और यही कारण है कि उनकी इस तरह की भाषा को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रखे हुए है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। इस बीच एक अन्य बैठक में भारत की प्रतिनिधि प्रिया सरोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति के 81वें सत्र में एजेंडा आइटम 75 के तहत भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। ये सत्र मिशन पर तैनात संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और विशेषज्ञों की आपराधिक जवाबदेही से संबंधित था। प्रिया सरोज ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के आपराधिक आचरण और कदाचार के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। आज महालया पर्व है। ये त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Delhi police has made extensive security arrangements in the New Delhi area to ensure public safety in view of the call of protest at Jantar Mantar by CJP today. Police personnel are deployed at multiple checkpoints in New Delhi district. Talking to the media, Deputy Commissioner of Police Kumar Abhishek said that extensive arrangements have been made to ensure public order is not disrupted in the area. He said that preventive checks have been implemented in the New Delhi area. The DCP also informed that some individuals have been detained who were planning to participate in today's protest. Meanwhile, Deputy Commissioner of Delhi Traffic Police Vikash Kumar said that they are

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்திருக்குகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजीपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
2: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: वेबसाइट को देखिए www.mumbaiport.gov.in। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। स्नातक शिक्षु ग्रेजुएट अप्रेंटिस 50 पद, तकनीकी शिक्षु डिप्लोमा 30 और ट्रेड शिक्षु ITI उत्तीर्ण 115 पद। इन रिक्तियों को भरने के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट अथवा 10 अक्टूबर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। वेबसाइट का पता है natas.education.gov.in। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से प्राप्त सूचना के आधार पर इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया फिलहाल निरस्त कर दी गई है। ये पद हैं अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, फार्मासिस्ट सहायक, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक और चालक साधारण ग्रेड। नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई में प्रशासनिक सह लेखा अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इसके लिए योग्य और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद वेतन स्तर 10 में प्रारंभ में 3 वर्षों के लिए भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट देखें www.spfo.gov.in। इंजीनियरिंग विभाग संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कार्यकारी अभियंता के 4 पदों को भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवश्यक जानकारियों के लिए देखिए चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट chandigarh.gov.in/public-notices। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स में युवा पेशेवर उत्पाद अभियांत्रिकी एवं अनुरक्षण का पद भरा जाना है। कुल रिक्तियों की संख्या 5 है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के विवरण और आवेदन प्रक्रिया सहित विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं C.dot वेबसाइट के करियर अनुभाग को। वेबसाइट है www.c.in/c.web/careers। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी विषय वस्तु विशेषज्ञ के एक पद को भरना चाहती है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मिल जाने चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 10 से 16 अक्टूबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। वेबसाइट है www.ddsindia.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा को।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

आज महालय एक ऐसा पावन दिन जहां पूर्वजों की स्मृतियां आंखें नम करती हैं और मां दुर्गा के आगमन की प्रतीक्षा में मन नई ऊर्जा भर देती है। अश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को तर्पण देकर पितृ पक्ष को विदाई दी जाती है और देवी पक्ष का स्वागत होता है। बंगाल में मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा धरती पर आने की यात्रा आरंभ करती है।

0: And Mukesh, one of the most cherished traditions associated with Mahalia is Mahishasur Mardini, the iconic radio program broadcast by Akashvani. A tradition dating back to 1931, it continues to inspire millions with the powerful voice of Birendra Krishna Bhadra, the sacred recitation of the Chandi part, and its soul-stirring devotional music.
1: Jago Durga ya या देवी सर्वभूतेषु जैसे स्त्रोत्र शक्ति और मंत्र भक्ति का संचार करती हैं। कल 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, जब मां शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होगी।
0: With the arrival of Mahalia, the anticipation of Ma Durga's homecoming begins to fill every corner of Bengal. From its bustling streets to its magnificent puja pandals, the state comes alive with devotion, joy, and the vibrant spirit of celebration.
1: और दिल्ली में भी बंगाल की इस अनुपम संस्कृति की छटा देखने को मिलती है चितरंजन पार्क में, जिसे दिल्ली का लघु बंगाल भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना, ढाक की थाप, धुनिची नृत्य और भव्य पंडालों के नाम रहने वाले हैं।
0: To discover how Bengal is celebrating Mahalia and how preparations are underway to welcome Ma Durga, we'll listen to our correspondent from Bengal later.
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 4:30 पहले ही बज चुके हैं और समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार मुकेश, एंड हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर लिसनर्स टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एंड यू ऑलरेडी नो बाय नाउ दैट आई एम रेशमा तिवारी एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Delhi police makes elaborate security arrangements amidst call for protest at Jantar Mantar, detains some individuals planning to participate. Rail and metro services partly affected in national capital.
1: भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया।
0: Defense Minister Rajnath Singh says India is closely monitoring neighborhood and global security developments. Reiterates, armed forces are undergoing major transformation under Atmanirbhar Bharat vision.
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की।
0: And IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about World Mental Health Day and World Migratory Bird Day. Now Mukesh, picture a Monday morning in Pune. Riya, 24, laughs in the team meeting, answers every email and posts a cheerful lunch photo. Nobody notices she hasn't slept properly in weeks. Today, 10th October 2026 is World Mental Health Day and stories like hers are exactly why this day exists.
1: बिल्कुल रेशमा, रिया जैसे कितने ही लोग हमारे आसपास हैं जो मुस्कान का नकाब पहने घूमते हैं, दफ्तर में, कॉलेज में, यहाँ तक कि हमारे अपने घर में भी। तो सोचिए, अगर कोई अपनी तकलीफ जुबान पर ना लाए तो क्या हम उसकी आंखों की भाषा पढ़ पाते हैं? इस सवाल को साथ रखिए, जवाब आगे मिलेगा।
0: On 10th October 1992, the World Federation for Mental Health launched this day, and the WHO and others later gave it wider recognition. Its mission is awareness, access to care, and less stigma. And this year's theme is Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change.
1: और इस विषय का मतलब, जिन्होंने खुद मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को जिया है, उनकी बात सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि नीतियों और सेवाओं के फैसलों में उन्हें बराबर का साथी बनाया जाए, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता।
0: Take the example of Mr. Sharma, a retired teacher in Lucknow.

0: who recovered from depression. His local clinic planned a counseling program without asking a single patient. Would you build a bridge without asking the people who cross it daily? That's the idea. Services made with people, not merely for them.
1: बिल्कुल. और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानसिक स्वास्थ्य एटलस 2024 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के केवल 59% देशों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य कानूनों का निर्माण करते समय इस स्थिति के अनुभवी व्यक्तियों अथवा उपभोक्ताओं से परामर्श लिया है. मानसिक स्वास्थ्य नीति या योजना तैयार करने वाले देशों के संदर्भ में ये भागीदारी 80% तक देखी गई है. ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की शुरुआत तो हो चुकी है, किंतु सभी स्तरों पर पूर्ण और प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अभी एक लंबा मार्ग तय करना शेष है.
0: But here's the gap. Only 37% included people with lived experiences in training primary healthcare workers, and 45% reported ongoing collaboration with their advocacy groups. And how many countries have fully moved from psychiatric hospitals to community care? Just 9%, while 53% are only beginning.
1: बिल्कुल रेशमा, समुदाय आधारित देखभाल का मतलब है कि उपचार के लिए किसी को अपने परिवार और मोहल्ले से कटना ना पड़े, सम्मान के साथ अपनों के बीच रहकर. हेलेन केलर ने कितना सही कहा था, अकेले हम बहुत काम कर सकते हैं, साथ मिलकर बहुत कुछ, यही इस दिन की आत्मा है.
0: राइट, सो व्हाट कैन यू डू टुडे? स्लीप वेल, मूव योर बॉडी, ईट बैलेंस्ड मील्स एंड स्टे कनेक्टेड. Listen to people as equal partners, not just storytellers. As Maya Angelou wrote, there is no greater agony than bearing an untold story inside you. If distress lingers, encourage seeing a qualified professional.
1: और अब रिया की तरफ लौटते हैं. उस शाम उसकी सहेली ने बस इतना पूछा, सच बता, कैसी है तू? और रुककर जवाब का इंतजार भी किया. रिया की आंखें भर आईं और पहली बार उसने सब कह दिया. तो हाँ, हम आंखों की भाषा पढ़ सकते हैं अगर रुककर सुने.
0: That's the real change this 10th October asks of us. Start conversations at home, in school and at work. Support peer groups and awareness campaigns, because listening is only the first step. Change begins when real voices shape real decisions. And now let's move on to our next dateline today. That's World Migratory Bird Day. Every year, the sky becomes a highway for travelers without tickets, passports or luggage. Birds fly thousands of kilometers, crossing mountains, countries and oceans, guided by instincts that scientists are still exploring. On 10th October, World Migratory Bird Day celebrates these extraordinary journeys and reminds us why their survival matters.

0: क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में दो बार मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाने वाला ये दिवस हमें याद दिलाता है कि पक्षियों का प्रवास एक निरंतर प्राकृतिक चक्र है जो अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग मौसमों में मनाया जाता है। सर्दियों की सुबह किसी झील के किनारे खड़े होकर देखिए जब आसमान में पक्षियों का झुंड एक सुंदर आकृति बनाते हुए गुजरता है। राजस्थान की सांभर झील हो या भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी प्रकृति को एक अलग ही रंग देती है। अगर ये मेहमान, मगर कहाँ से आते हैं ये मेहमान?
1: The answer lies in migration routes called flyways. Birds such as the bar-headed goose, demoiselle crane and northern pintail travel seasonally in search of food, suitable temperatures and breeding grounds. Many reach the Indian subcontinent through the Central Asian flyway. Their journeys connect ecosystems across international borders.
0: जी हाँ, लेकिन जरा सोचिए अगर हजारों किलोमीटर उड़कर आया हुआ कोई पक्षी रास्ते में रुकने के लिए सुरक्षित आर्द्र भूमि ही ना पाए तो क्या होगा? प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बिजली के तार, कांच की इमारतें और घटते जलाशय इन पक्षियों के लिए गंभीर खतरे हैं। एक छोटी सी जगह का नष्ट हो जाना भी उनकी पूरी यात्रा को प्रभावित कर सकता है।
1: As naturalist John Muir famously wrote, in every walk with nature, one receives far more than he seeks. Migratory birds do far more than beautify our skies. They help control

0: Insect pests disperse seeds and support healthy ecosystems. Their changing numbers can also alert scientists to environmental damage.
1: और संरक्षण की इस मुहिम में आपकी भूमिका भी काफी प्रमुख है. मान लीजिए सुबह की सैर के दौरान आपने किसी झील पर प्रवासी पक्षियों का झुंड देखा. उनकी तस्वीर, स्थान और सही पहचान दर्ज करके आप वैज्ञानिकों की मदद कर सकते हैं. ई बर्ड जैसे मंच आम नागरिकों को पक्षियों से जुड़ा उपयोगी आंकड़ा साझा करने का अवसर देते हैं.
0: दिस ईयर्स थीम एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशंस मैटर सेलिब्रेट्स सिटीजन साइंस. The year 2026 also marks the 60th anniversary of the International Water Bird Census, which began in 1967. Volunteers and researchers count water birds to track population trends and identify wetlands that need protection.
1: बिल्कुल रेशमा, अगली बार किसी पक्षी को आप खुले आसमान में उड़ते देखें तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्या हमारी नदियाँ, झीलें और जंगल उसकी अगली यात्रा के लिए सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि इन पंखों की उड़ान केवल पक्षियों की कहानी नहीं, हमारी धरती के स्वास्थ्य की भी कहानी है. आइए इनके आसमान को खुला और इनके ठिकानों को सुरक्षित रखें. और आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर प्रसारित परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो इस क्रम में सबसे पहले पश्चिम बंगाल चलें.
0: राइट, यस. महालया इज बीइंग ऑब्जर्व टुडे मार्किंग द ट्रेडिशनल इन्वोकेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड हेराल्डिंग द अराइवल ऑफ दुर्गा पूजा, बंगाल्स बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल. हियर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम आवर कोलकाता कॉरेस्पॉन्डेंट.
2: The day marks the culmination of Pitripokkho, the fortnight dedicated to paying homage to departed ancestors, and the beginning of Devi Pokkho, according to traditional Hindu belief. Devotees across the state are offering tarpon on the banks of rivers and other water bodies, praying for the peace of their ancestors' souls. Mahalaya is also synonymous with the timeless radio program Mahishasura Mardhini, broadcast by Akashvani in the early hours of the day. The program, featuring Sanskrit chants, devotional songs, and narration by Birendra Krishna Bhadra, has remained an integral part of Bengal's cultural heritage for generations. Prime Minister Narendra Modi, in a social media message, said, "We seek the blessings of Ma Durga. May the blessings fill our society with happiness, compassion and hope. May there be peace and prosperity all around." With the invocation of Goddess Durga, the countdown to Durga Puja begins, filling the air with devotion, anticipation and festive spirit. Sandeep Andash Gupta, Akashvani News, Kolkata.
1: और पश्चिम बंगाल के बाद अब चलेंगे आंध्र प्रदेश. लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को बताएं कि अक्टूबर का महीना रेशमा इस बार काफी गर्म है, लेकिन आंध्र प्रदेश में अरक्कू वैली जो है अल्लूरी सीताराम राजू जिले में जो पड़ती है वो एकदम से हरी भरी और बहुत ही रिफ्रेशिंग है.
0: Yes, and adding to the valley's tourist attractions this year, hot air balloon rides have resumed at the popular Padmapuram Botanical Gardens. We have a report from our correspondent.
3: District Collector T. Nishanti relaunched the hot air balloon service along with the ITDA Paderu Project Officer Aditya Verma. Speaking to the media, Collector said the service had been reintroduced to provide tourists visiting Arukku Valley with a new and memorable experience. She said the rides were being operated in partnership with ITDA Paderu in accordance with the international safety standards. She encouraged both tourists and local residents to make use of the opportunity to experience the thrill of a hot air balloon ride. October is considered a scenic time to explore Arukku Valley with its verdant surroundings and waterfalls, making it an attractive destination before the winter chills set in. Visitors planning a weekend getaway can also consider an overnight stay to explore the valley at a leisurely pace. With the resumption of hot air balloon rides, Padmapuram Botanical Gardens is set to offer visitors another exciting way to experience the scenic beauty of Arukku Valley. Satyanarayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
1: और आंध्र प्रदेश के बाद चलते हैं पड़ोस में केरलम में. और केरलम सरकार जो है वो महिलाओं के लिए कुछ करने जा रही है.
0: यस, द स्टेट गवर्नमेंट्स वुमेन ऑन द मूव एंड मेंस्ट्रुअल नीड्स स्कीम व्हिच प्रोवाइड्स सैनिटरी नैपकिंस टू वुमेन एंड गर्ल्स एट लो प्राइसेस ड्यूरिंग ट्रैवल हैज बीन लॉन्च्ड इन केरलम. अ रिपोर्ट.
4: द स्कीम एम्स टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स ईजीली अवेलेबल टू वुमेन ट्रैवलर्स इन पब्लिक प्लेसेस. सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन

और अब हम याद कर रहे हैं 1930 के दशक में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री रहीं रूबी मेयर्स, जिन्हें सुलोचना के नाम से भी जानते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। 1930 के दौर में सुलोचना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शीर्ष अभिनेत्री थीं। उन्होंने शुरुआत तो मूक फिल्मों से की, लेकिन बोलती फिल्मों के दौर की शुरुआत में भी उनका सिक्का फिल्म इंडस्ट्री पर खूब चला। हिंदी सिनेमा में विशेष योगदान के लिए 1973 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूक फिल्मों के दौर में ही सुलोचना के खाते में कई हिट फिल्में थीं। बोलती फिल्मों के आने के बाद सुलोचना का करियर थोड़ा ठहर गया। सुलोचना असल में क्रिश्चियन थी और उन्हें हिंदुस्तानी भाषा बहुत अच्छे से नहीं आती थी। बोलती फिल्मों के

आने के साथ ही डायलॉग बोलने की दक्षता जरूरी हो गई और ये सुलोचना के करियर के लिए एक धक्का था। और कुछ वक्त ऐसे ही चला मगर फिर सुलोचना ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक साल का ब्रेक लेकर हिंदुस्तानी धड़ल्ले से बोलने की तालीम ली और फिर वापसी की। और अब हम याद कर रहे हैं दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री और गायिका मनोरमा को। उन्होंने 1500 से अधिक तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। मनोरमा ने फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का खूब प्यार पाया और थंगावेलु, थेंगाई श्रीनिवासन, छो और नागेश सरीखे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। 1000 फिल्म पूरी होने के साथ ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वर्ष 2002 में भारत सरकार

0: और अब हम याद कर रहे हैं लुडमिला पावलीचेंको को, दूसरे विश्व युद्ध की वीरांगना महिलाओं में से वो एक थीं और आज उनकी पुण्यतिथि है। वो इतिहास की सबसे कामयाब स्नाइपर्स में से एक रही थीं। 1941 में सोवियत यूनियन पर नाजियों के हमले के बाद इसके बाद उन्होंने लुडमिला पावलीचेंको को युद्ध में कूद गई थीं और उनके नाम 309 जर्मन सैनिकों को अपनी राइफल से मार गिराने का खिताब है।
1: एंड इट्स टाइम नाउ टू रिमेंबर द गजल किंग कंपोजर एंड म्यूजिशियन जगजीत सिंह, हु वाज बोर्न ऑन 8 February 1941 एंड पास्ड अवे ऑन 10 October 2011। हिज ओरिजिनल नेम वाज जगमोहन सिंह धीमन।

0: हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी सहित कई जबानों में गाने वाले जगजीत सिंह को वर्ष 2003 में भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: And now let's talk about some birthdays now.
0: जी बिल्कुल, भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ शांताराम कोटनीट्स को आज हम याद कर रहे हैं, आज उनकी जयंती है। वो दूसरे विश्व युद्ध के सिपाहियों का उपचार करते करते प्राण त्यागने वाले निस्वार्थ सेवक थे। द्वारकानाथ कोटनीट्स को द्वितीय जापान युद्ध चीन जापान युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए चीन में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है।
1: 10th October is also the birthday of Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami, who we know as R.K. Narayan. And
0: और आज ही फिल्म अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन है। 40 साल के लंबे करियर में लगभग 180 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया है, तो क्यों ना सबसे पहले उनकी फिल्म का डायलॉग सुना जाए, खून भरी मांग का।
2: मुझे माफ कर दे बेटा, मैं मजबूर थी, बस थोड़ी देर और सब जुल्मों का अंत हो जाएगा। ये देख, मैं दिल्ली क्या लाई हूँ।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியில் செய்திருக்கு. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की

0: जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி 100.1 மெகா ஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசை.

0: में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं की संख्या लगभग 60 लाख थी, जो सितंबर 2026 तक बढ़कर करीब 1 करोड़ 70 लाख हो गई। डिजिटल प्रणाली के विस्तार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 30 सितंबर 2026 तक जीएसटी प्रणाली में कुल 3053 करोड़ चालान अपलोड किए जा चुके थे। इस अवधि तक 833 करोड़ 82 लाख ईवे बिल भी तैयार किए गए थे। राजस्व के मोर्चे पर भी वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह लगभग 12 लाख 46 हजार करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.6% अधिक था। इसी उद्देश्य से जीएसटी परिषद ने सितंबर 2025 में कर दरों के युक्तिकरण की सिफारिश की थी। नई व्यवस्था में 5% और 18% की दो मुख्य दरें तथा चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष दर रखी गई। इसके बाद अक्टूबर 2026 में परिषद की 57वीं बैठक में प्रतिक्रियागत सुधारों पर जोर दिया गया। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जारी करने, आवेदन पत्रों को सरल बनाने तथा जीएसटी पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने की सिफारिश की गई। पंजीकरण में संशोधन की प्रक्रिया को भी तेज करने का प्रस्ताव है। कुछ मामलों में कारोबारी विवरणों में बदलाव को स्वचालित रूप से स्वीकार किया जा सकेगा, वहीं कुछ विशेष मामलों के लिए अलग प्रक्रिया लागू होगी।
1: पंजीकरण किसी भी कारोबार की औपचारिक शुरुआत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर देनदारी का सही आकलन, इनपुट टैक्स क्रेडिट का उचित दावा और समय पर रिफंड मिलना भी जरूरी है। जीएसटी परिषद ने इन प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए कई प्रस्तावों की सिफारिश की है। सुनते हैं विशेष रिपोर्ट।
2: जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITCE एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके तहत पात्र पंजीकृत कारोबारी अपने कारोबार के लिए खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाए गए कर का क्रेडिट ले सकते हैं। इससे करों के दोहराव को कम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निर्माता ने कच्चा माल खरीदते समय 10,000 रुपए का कर चुकाया और तैयार उत्पाद बेचते समय 25,000 रुपए का कर वसूला, तो पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के बाद उसे सामान्य रूप से 15,000 रुपए का अंतर जमा करना होगा। हालांकि ITC का दावा निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन होता है। इसके लिए आपूर्तिकर्ताओं के चालान, रिटर्न और उपलब्ध क्रेडिट के बीच सही तालमेल होना आवश्यक है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जीएसटी परिषद ने GSTR 1, GSTR 1A और GSTR 3B जैसे रिटर्न में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के प्रस्तावों की सिफारिश की है। इन सुधारों का उद्देश्य कर देनदारी और ITC से संबंधित विवरणों में अंतर को पहचानना और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठीक करने में सहायता देना है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्राप्तकर्ता को चालान स्वीकार करने, अस्वीकार करने या उन्हें लंबित रखने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा ITC को वापस लेने और बाद में दोबारा दावा करने से जुड़े विवरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट की व्यवस्था को बेहतर बनाने की सिफारिश की गई है। निर्यात करने वाले कारोबारियों और ऐसे मामलों में जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट पर कर की दर से अधिक होती है, रिफंड की प्रक्रिया कार्यशील पूंजी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। रिफंड जुड़े नियमों में कुछ अन्य बदलाव भी प्रस्तावित हैं। इनमें निर्यात की गई वस्तुओं के कारोबार मूल्य की गणना से संबंधित सीमा में बदलाव और 1,000 रुपए की न्यूनतम रिफंड सीमा को कुल रिफंड राशि के आधार पर लागू करने का प्रस्ताव शामिल है। इन कदमों से निर्यातकों और अन्य पात्र कारोबारियों की पूंजी लंबे समय तक कर विभाग के पास फंसी रहने की समस्या कम हो सकती है। परिषद ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर ITC संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने की भी सिफारिश की है। इनमें निर्धारित शर्तों के अधीन आउटडोर कैटरिंग, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, दूरसंचार टावर तथा कारखाने के बाहर की कुछ पाइपलाइनें शामिल हैं।
1: कर व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ ये भी जरूरी है कि करदाताओं को नियमों की स्पष्ट जानकारी मिले और छोटी प्रक्रियागत गलतियों के कारण अनावश्यक विवाद न बढ़े। जीएसटी परिषद ने विवाद निपटान, दंड और प्रवर्तन से जुड़े प्रस्तावों में इसी संतुलन को ध्यान में रखने का प्रयास किया है।
3: किसी भी कर व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नियम कितने स्पष्ट हैं और विवादों का समाधान कितनी निष्पक्षता तथा समयबद्ध तरीके से होता है। जीएसटी परिषद ने अक्टूबर 2026 की बैठक में कर विवादों को कम करने और कारोबारियों के लिए प्रक्रिया को अधिक पूर्वानुमेय बनाने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों की सिफारिश की। इनमें कुछ मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने की न्यूनतम सीमा 10,000 रुपए रखने, सामान्य मामलों में अधिकतम सामान्य दंड को

0: 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने और निर्धारित अवधि के भीतर कर तथा ब्याज जमा करने पर कुछ मामलों में कम दंड लगाने के प्रस्ताव शामिल हैं। परिषद ने कुछ गैर धोखाधड़ी वाले मामलों में न्यूनतम दंड हटाने और अपील के दौरान केवल दंड से संबंधित आदेशों के लिए पूर्व जमा राशि की अधिकतम सीमा तय करने की भी सिफारिश की है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य छोटे कर विवादों में अनावश्यक मुकदमेबाजी कम करना और करदाताओं को समय पर अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है। परिषद ने ई वे बिल के आधार पर माल ढोने वाले वाहनों की जांच को भी अधिक स्पष्ट नियमों से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। इससे माल की आवाजाही में अनावश्यक देरी कम करने और परिवहन लागत घटाने में मदद मिल सकती है। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए 5 करोड़ रुपए तक के पिछले वित्त वर्ष के कारोबार वाले पात्र करदाताओं के विलंबित रिटर्न पर कुछ शर्तों के अधीन विलंब शुल्क माफ करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ स्पष्टीकरण प्रस्ताव हैं। इनमें विदेशी कार्यालयों या शाखाओं के माध्यम से दी जाने वाली कुछ सेवाओं की निर्यात स्थिति, निर्यात भुगतान और विदेशों के ग्राहकों के निर्देश पर SEZ या फिर फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन में पहुँचाई जाने वाली वस्तुओं के शून्य दर वाले व्यवहार से संबंधित विषय शामिल हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य भारतीय कारोबारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना आसान बनाना और कर नियमों की व्याख्या में होने वाले मतभेद कम करना है। इसलिए आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सुधारों में रिफंड में लगने वाला समय कितना घटता है, विवादों की संख्या में कितनी कमी आती है और छोटे कारोबारियों के लिए अनुपालन वास्तव में कितना आसान होता है। छोटे ई कॉमर्स विक्रेताओं के लिए भी दूसरे राज्यों में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनाने का प्रस्ताव है। इससे उन उद्यमियों को मदद मिलने की उम्मीद है जो डिजिटल मंचों के माध्यम से अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाना चाहते हैं। इन सुधारों का व्यापक उद्देश्य है कि कारोबारी अपना अधिक समय उत्पादन, सेवाओं और बाजार के विस्तार पर लगा सकें, न कि जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करने में। लेकिन कारोबार की प्रक्रिया तभी अधिक सुगम होगी जब कर जमा करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और रिफंड प्राप्त करने की व्यवस्था भी अधिक सटीक और समयबद्ध हो।
1: आज के विश्लेषण में हमने जाना कि नेक्स्ट जेन GST प्रक्रिया सुधारों का उद्देश्य भारत की कर व्यवस्था को अधिक सरल, तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। लेकिन सुधारों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रस्तावों को कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। साथ ही करदाताओं के अधिकारों की रक्षा, राजस्व की सुरक्षा और कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। इसी के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जंतर मंतर स्थले विरोध समाह्वानेषु दिल्ली आरक्षी बलेन प्रवर्तिता सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था। अनेके संदिग्धाः निरुद्धाः राष्ट्रीय राजधान्यां। रेल मेट्रो सेवाः च आंशिकतया प्रभाविताः। संवैधानिक संस्थानां दुर्बलीकरणस्य, लोकतंत्रे च जनविश्वास भंजनस्य विपक्षोपरि भाजपा दलेन आक्षिप्तः गभीरारोपः। प्रतिवेशु देशेषु वैश्विक सुरक्षा समीकरणेषु च भारतस्य सूक्ष्म दृष्टिः। आत्मनिर्भर भारत संकल्पेन सशस्त्र सेना बलानि महारूपांतरणं प्राप्नुवन्तीति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः। संयुक्त राष्ट्र सभायां पाकिस्तानाय भारतस्य दृढ़ प्रत्युत्तरम्। उक्तञ्च यत् जम्मू कश्मीरं वर्तते भारतस्य अभिन्नम् अंगम्। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीरेषु अतिवृष्टेः व्यंजितं पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य जंतरमंतरस्थले CJPT समूहस्य विरोध प्रदर्शनस्य आह्वानं वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिबलेन नवदिल्ली क्षेत्रे व्यापक सुरक्षा प्रबन्धाः विहिताः, येन जनसुरक्षा शांति व्यवस्था च बाधिता न भवेत्। वार्ताहरैः सह संभाषणे दिल्ली आरक्षी उपायुक्तः कुमाराभिषेकः अवोचत् यत् क्षेत्रे लोकव्यवस्थायाः अक्षुण्णतायै बहुषु स्थलेषु आरक्षिबलानां निक्षेप

0: विपक्षिदलानि स्वकीयां निर्वाचन पराजयं परिहर्तुं मार्गेषु विरोधप्रदर्शनस्य आश्रयं गृह्णन्ति। सः विपक्षिदलानाम् उपरि आरोपं कृतवान् यत् ते स्वप्रतिषेधेन विगत त्रिचतुर्दिनेभ्यः दिल्लीवासिनां कृते महतः क्लेशान् उत्पादयन्ति। भाजपा नेत्रा अग्रे स्पष्टीकृतं यत् देशः लोकतान्त्रिकमर्यादया संसदि निर्वाचितप्रतिनिधिभिः अथ च उत्तरदायित्वभावेन एव सञ्चाल्यते। सः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनम् अभिलक्ष्य आरोपम् अकरोत् यत् तेन संवैधानिकसंस्थानां गरिमा कलंकिता अवमानिता च।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: संयुक्त राष्ट्र संघे भारतेन जम्मू कश्मीर विषये मिथ्या प्रचाराय असत्य कथनानां च कृते पाकिस्तानस्य तीव्रा भर्त्सना कृता। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अयं केन्द्र शासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नं अपृथक्करणीयं अंगमस्ति, सदैव स्थास्यति च। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः चतुर्थ समितौ उपनिवेशवाद उन्मूलन इति विषये आयोजितायां चर्चायां भारतेन प्रत्युत्तर अधिकारस्य प्रयोगः कृतः। तत्र संसद सदस्या महिमा कुमारी मेवाड़ महोदया पाकिस्तान प्रतिनिधेः वक्तव्यस्य प्रत्युत्तरं दत्तवती। न्यूयॉर्क स्थितेन संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यनेन एक्स इति सामाजिक पटले सूचितं यत् संसद सदस्यया महिमा कुमारी मेवाड़ महोदयया जम्मू कश्मीर संबद्ध मिथ्यापवादानां प्रसाराय संयुक्त राष्ट्र मंचस्य दुरुपयोगाय च पाकिस्तानस्य तीव्र निंदा कृता। आकाशवाणी रायपुरस्य उपनिदेशकः विकल्प शुक्लः तीव्र हृदयाघातेन अद्य अपराह्णे दिवंगतः। भारत ऋतु विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेशेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we will be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-4444, and 2371-7117. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप बेहिचक होकर डायल कीजिए इन नंबरों पर. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0464 और 2371-7117. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी ज़रूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. इंडियन स्टॉक मार्केट स्नैप देयर 8-week लूजिंग स्ट्रीक. सेंसेक्स

0: Nifty gains around 0.5%. Wall Street wraps up week with notable gains and global crude oil prices rise during the week.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार 8 हफ्तों की गिरावट के बाद इस सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग आधे प्रतिशत का उछाल आया। वॉल स्ट्रीट इस सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: Listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Shrotao, hamare saath hamare pehle caller jud chuke hain. Ye Rajasthan se hain. Inka naam hai Rajesh. राजेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्ते. नमस्ते मैडम. ये मेरा सवाल ये था मैडम कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनियां है जो ज्यादा चलन आ रहा है मैडम इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कारों का, स्कूटरों का, तो आने वाले भविष्य में 5 साल का अगर अनुमान लेके चले तो इनका भविष्य किस प्रकार का रहेगा आने वाले 5 साल के लिए?
3: चलिए राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. जिस प्रकार से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है और एनर्जी सुरक्षा को लेके दुनिया भर में बात की जा रही है
1: जी,
3: तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल आप देखें तो हर साल बढ़ रही है. जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो भी उसमें निवेश अपना बढ़ा रही है. और इसका जो बुनियादी ढांचा है जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें जिस प्रकार से लिथियम बैटरीज में डेवलपमेंट हो रहा है उसकी रेंज भी बढ़ती जा रही है, कीमतें कम हो रही हैं और इसका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे जैसे ये और फैलेगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बढ़ती हुई दिखाई देंगी. और अभी जो लोगों को समस्याएं आती हैं प्राची अनुभा इसमें, वो ये आती है कि हम दूर गाड़ी अगर ले जाना चाहें तो भाई वहाँ पर हमको चार्जिंग का मिलेगा, तो अब तो गाड़ी मुझे लगता है 400-500 किलोमीटर वाली गाड़ी आम हो गई है. और अब तो मैंने एक पढ़ रहा था कहीं पर 1100 किलोमीटर की भी गाड़ी आ रही है जो 1100 किलोमीटर चलती है. तो ये तो लगता है जैसे आप पेट्रोल डीजल भरवा के भूल जाते हैं, तो ऐसे आप चार्ज करके भी काफी टाइम के लिए भूल सकते हैं. तो बहुत उज्ज्वल राजेश जी भविष्य इसका अगले आने वाले सालों में नजर आता है.
1: और शरद जी, जिज्ञासा लोगों में इस प्रकार भी है ईवी को लेकर के कि एक तो आपने डिस्टेंस की बात बताई कि लंबी अगर दूरी पर लेकर के जाते हैं तो क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं अनुभव, लेकिन ये भी है कि गुरुग्राम जैसे इलाके में जहाँ पर कई बार पानी जम जाता है वहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम मतलब कर पाएंगे आवागमन?
3: देखिए, जैसे जैसे इनोवेशन होता है तो देश के अनुसार गाड़ियां बनाई जाती हैं. तो जो इसकी मशीनरी होती है, जो मोटर होती है, बेसिकली इसमें मोटर होती है
1: जी.
3: तो उसकी जो पोजीशनिंग है, मुझे पता लगा कि कुछ कंपनियां पोजीशनिंग उसको थोड़े हायर लेवल पे कर रही हैं. पहले मोटर नीचे होती थी, तो आप वो कस्टमाइज कर सकते हैं. आप जिन इलाकों में पानी भरता है तो आप वहां पर उसकी मोटर की पोजीशनिंग आप चेंज कर सकते हैं जिससे कि पानी उसको प्रभावित ना कर सके. तो मुझे लगता है ये भी समस्या का समाधान निकल आएगा.
0: लेट्स गो ओवर टू आवर नेक्स्ट लिसनर. जय कुमार इज कॉलिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद. जय कुमार, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्कार.
0: नमस्ते
4: मंत्रा टीम को नमस्कार और कोहली जी को विशेष नमस्कार.
3: नमस्कार जय कुमार जी, नमस्कार.
4: मेरा एक सवाल है जो पिछले किसी मार्की मंत्रा में बोला गया था कि जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है सोना कमजोर हो जाता है
3: जी,
4: तो इसका क्या लॉजिक है? और हमारी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट निफ्टी इंडेक्स में अभी फायदेमंद होगा या आगे चल के फायदेमंद होगा?
3: जय कुमार जी, आपका पहला सवाल डॉलर जब मजबूत होता है तो सोना क्यों कमजोर होता है, उसका कारण ये है कि डॉलर की जो दबदबा है, डॉलर का जो रुतबा है, डॉलर का जो पूरा का पूरा सुप्रीमेसी है, वो डॉलर इस समय एक इंटरनेशनल करेंसी है. आप देखें तो दुनिया का अभी भी 60-70% व्यापार, बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो 90% अभी भी डॉलर में होती है. और उधार जो लिया जाता है दुनिया में, लोन्स लिए जाते हैं, वो सब डॉलर में लिए जाते हैं. तो मेजर ऑफ वैल्यू डॉलर है. तो मुझे लगता है कि गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है. तो जब डॉलर कमजोर होता है, इसको आप मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, डॉलर जब कमजोर होता है तो ऐसा लगने लगता है सोने के निवेशकों को, ट्रेडर्स को, कि अब डॉलर नहीं तो क्या. तो डॉलर नहीं तो गोल्ड ही ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है. और डॉलर जब मजबूत होता है तो फिर ऐसे में

0: गोल्ड का थोड़ा सा चमक कम हो जाती है आने वाले सालों में. मुझे लग रहा है जिस प्रकार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत है, 40 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का कर्ज है और बाकी चीजों को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डॉलर की परचेजिंग पावर थोड़ी घट रही है. तो जैसे जैसे घटेगी, इसीलिए सोने का भविष्य जब उज्ज्वल बताया जाता है तो उसका एक कारण यह रहता है कि डॉलर का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं नजर आता है. तो ये आपने दूसरा निफ्टी का पूछा,
1: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का भविष्य आप कैसे देखते हैं कि अभी बेटर?
0: देखिए अभी तो बहुत चैलेंजिंग टाइम से निफ्टी और सेंसेक्स गुजर रही है. आप देखते हैं हालांकि 8 हफ्ते का एक जो नजर लगी हुई थी वो थोड़ी सी हटी है, हल्का सा ऊपर गया है. पर अभी मुझे लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट से हमें थोड़ा खतरा है क्योंकि वहां पर जो एक ये डेट बबल बन रहा है, जो उधार, वो मुझे लग रहा है कि ये वापस कहीं डेट डिफॉल्ट इसमें हो गया तो एक बड़ा क्रैश अमेरिकन मार्केट्स में आ सकता है. तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने का समय है जयकुमार जी. पर मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि का जो निवेशक है, 5 साल 10 साल का, उसके लिए मौके भी देती है मार्केट. अगर इस समय वैल्यूएशंस बहुत सारी कंपनीज की अट्रैक्टिव है तो इसलिए इसको मौके की तरह भी देखा जा सकता है. पर उसमें फिर शर्त यह है कि नजरिया लंबे वक्त का होना चाहिए.
2: बिल्कुल. इस बीच दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी, अपना सवाल पूछिए.
3: हाँ नमस्कार सभी को. अब कोहली सर से, सर नमस्कार. सर
0: नमस्कार. नमस्कार
3: सर, तबीयत ठीक है? आवाज में आपकी थोड़ी सी,
0: हाँ आवाज थोड़ी भारी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी.
3: हो जाएंगे सर, हो जाएंगे. भगवान से प्रार्थना करता हूँ. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे रिजर्व बैंक की सर मौद्रिक नीति की घोषणा हुई है जिसमें रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है सवा क्वार्टर पॉइंट, मतलब 0.25% बेसिस पॉइंट बढ़ाया उन्होंने सर
0: जी.
3: तो इससे बैंकिंग सेक्टर में बैंकर लोन ब्याज दर महंगा हो जाएगा रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की
0: जी.
3: तो क्या बैंक आने वाले दिनों में होम लोन ऑटो लोन में बढ़ाएंगे, ईएमआई लोन का बढ़ सकता है सर? और एक सर टेक्निकल थोड़ा सा पूछना था सर
0: जी.
3: जो गोल्डन ब्रेकआउट होता है सर किसी भी स्टॉक में, गोल्डन ब्रेकआउट इसे, तो कैसे कब पता चलेगा सर कि ये शेयर में गोल्डन ब्रेकआउट लेवल आने वाली है या उसके आसपास अभी ट्रेड कर रही है? धन्यवाद.
0: चलिए, आपने RBI MPC का पूछा. जी हाँ, लोन बिल्कुल महंगे होंगे क्योंकि जब रिपो रेट बढ़ाया जाता है अमित, तो रिपो रेट वो होता है जिस रेट पर बैंक RBI से उधार लेते हैं. RBI को बैंकर्स बैंक कहा जाता है. तो वो आगे पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को. बिल्कुल आपकी EMIs, और मैं सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि EMI आजकल बढ़ाने का ट्रेंड नहीं है. आजकल क्या करते हैं वो टेन्योर बढ़ा देते हैं, यानी कि आपने 10 साल का लोन लिया हुआ है तो 10 साल 6 महीने, 10 साल 4 महीने, 20 साल का लिया हुआ तो हो सकता है 21 साल का हो जाए. इस प्रकार की आजकल प्रचलन ज़्यादा है बजाय इसके कि आपकी EMI में बदलाव किया जाए. क्योंकि PDCs वगैरह रखे होते हैं, वैसे भी बैंक ये दिखाते नहीं है कि अब महंगा हो गया. जब आपको पता लगता है लोन ज़्यादा समय तक चल रहा है तो बिल्कुल महंगा होगा. इस तरीके से होगा या उस तरीके से होगा, बात एक ही है. गोल्डन ब्रेकआउट देखिए, पता जब लगता है, जब एक तो स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है और हम लोग जब उसको चार्ट्स पे देखते हैं तो चार्ट्स में जो कैंडल्स हैं वो भी बताती हैं कि गोल्डन ब्रेकआउट हो रहा है. और बढ़िया इसका तरीका वैसे ओपन इंटरेस्ट देखने का है. तो अमेरिकन मार्केट्स में इसको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं, हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे जैसे जब देखें निवेशकों का रुझान उस तरफ हो रहा है या कोई बड़ी खबर आने वाली है ऐसी पॉलिसी रिलेटेड उस सेक्टर के लिए, उस कंपनी के लिए, तो उससे भी पता लगता है. और भी बहुत सारे तरीके हैं अमित, फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा. और थोड़ा सा इसमें अनुभव प्राची ये भी है कि हर शेयर के लिए गोल्डन ब्रेकआउट का एक ही नियम हमेशा नहीं चलता है. हम लोग किसी किसी सेक्टर में तो दूर से पहचान लेते हैं, किसी किसी में बहुत पास आने में पहचाना जाता है. तो एक जनरल रीड है, पर आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो समझिए कि
1: मार्केट की समझ होना बहुत जरूरी है इसके लिए.
0: हाँ, पर ये जो हमारे श्रोता हैं अमित,
1: इनकी समझ
0: काफी है क्योंकि ये निरंतर टेक्निकल सवाल पूछते हैं. ये FNO में भी मैंने इनको देखा है कई दफे पूछते वाला, कि मैंने इनको अलर्ट भी किया है सावधान ना करिए जी.
2: बिल्कुल. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सप्ताह के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार 8 हफ्तों की गिरावट के बाद इस सप्ताह वृद्धि हुई है। पिछले 25 सालों में गिरावट का ये सबसे लंबा दौर रहा। हालांकि रोचक बात यह है कि इस सप्ताह में वृद्धि तब दर्ज की गई है जब वैश्विक बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, विदेशी निवेशक लगातार घट रहे हैं और

0: what our commerce minister said, it might turn out to be beneficial for us. Right. You never know. You know, right. It might help in retaining the talent here in the long run. Yeah.
1: So let's take the next call coming in from Bhilai. Ravi Narayan is online with us. Mr. Narayan, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
2: Thank you, ma'am. Dr. Saab, good evening.
0: Good evening.
2: Get well soon.
0: Thank you.
2: मेरा question जो है अभी जो market driven जो volatility है
0: जी
2: उसको जो है domestic institutional investors हों या फिर individuals हों वो कितना किस हद तक उसको offset करते होंगे ये इसको इसको quantify कर सकते हैं क्या और इसके कारण से कुछ इसका कोई रोल है क्या और क्या इसका दारोमदार है ये मैं जानना चाह रहा था
0: देखिए रवि जी इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल हमें मिलता है और जो हम तो क्योंकि 24 घंटे मार्केट्स में रहते हैं किसी ने मुझे पूछा 24 घंटे कैसे रहते हैं क्योंकि हम लोग ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक करते हैं कभी उधर कॉस्पी खुल जाता है उधर निके खुल जाता है हैंगसेंग खुल जाता है स्ट्रेट टाइम खुल जाता है शाम दिन में कैक और डैक्स खुला रहता है फिर उधर डाउ S&P खुल जाता है लगभग 24 घंटे तो हमने इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल रवि जी कैसे इसको हैंडल किया जाता है अगर आप DIIs का एक्टिविटी देखें तो जब जब FIIs बेच रहे हैं तब तब DIIs खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल के मार्केट में एक आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है
1: जी।
0: तो उसका ये एग्जाम्पल है कि 10,000 करोड़ 9,000 करोड़ और कभी कभी तो उनके बेचने से भी ज्यादा खरीदते हैं तो वॉलिटिलिटी को हैंडल करने का तरीका यही है कि आप जो ट्रेडर्स हैं वो तो देखिए 90% लूज कर जाते हैं छोटे ट्रेडर्स खासकर पर जो निवेशक हैं वो जो लॉन्ग टर्म के लिए वो इसमें एक मौका ढूंढते हैं तो आपको वॉलिटिलिटी परेशान उनको करती है जो डे ट्रेड्स करते हैं या जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो भी कई दफ़े फंस जाते हैं पर अगर आप 5 साल 10 साल का नज़रिया रख रहे हैं तो इसमें रवि जी इतनी वॉलिटिलिटी हमें परेशान नहीं करती है मुझे लगता है आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या तो करते होंगे या करते तो मैं आपको सलाह यही दूंगा मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहुत लेसन सिखाया है मार्केट ने पिछले 2 साल में तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको संदेश मिल गया होगा मैं जो कहना चाह रहा था
1: जी ओके लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी US स्टॉक मार्केट्स एंडेड हायर यस्टरडे अमंग द मेजर इंडिसेस द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्लाइम्ड 0.8% The Nasdaq composite as well as the S&P 500 gained around 0.6%. For the week, the S&P jumped 1.1%, Dow rose 0.9% and Nasdaq advanced 0.6%. A very quick comment from you, Sharaji, on the US markets because right now, next week, there are certain, data which is going to come in there. There's going to be US inflation data which is going to come out. Then there is a retail sale price. How do you see the markets moving?
0: I think the bond yields and the dollar index, they are the driving factors. And why the markets rose on when they closed Friday, they closed in the green.
1: Mm.
0: It was because of the bond yields cooling down.
1: Yeah.
0: And there was a bond buyback done. In fact, they were disputed numbers on WAB. First, it was thought to be $39 billion. Then it was thought to be $22 billion. And finally, $6 billion of bond buyback was done against. Mm. They received $14.9 billion of bids. So that cooled down from 5.36, it came down to 5.22. That led to the rally.
1: Right. Let's move on to oil now. Global crude oil prices rose this week. Brent crude December futures rose 2.4% to settle at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude December futures gained 1.7% to end at $91.01 per barrel over the week.
3: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस में बने डीजल की बिक्री और आयात पर लगी पाबंदियां अस्थायी रूप से हटा दी हैं। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस तुरंत 3 लाख टन से ज्यादा डीजल की सप्लाई करेगा इसके बाद नवम्बर में 5 लाख टन फिर 10 लाख टन और रूसी रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त 30 लाख टन डीजल की सप्लाई की जाएगी बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका और ग्लोबल मार्केट में रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की प्रस्तावित सप्लाई का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ सकता है शरद जी हम इस पर आपसे कमेंट लेंगे मगर इससे पहले सेतुपति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
4: Good evening, Market Mantra team. My name is Sedupathi from Chennai. I have two quick questions, sir.
0: Yeah.
4: Regarding the Starlink from the

0: Mr. Elon Musk is having some barrier inside India. What could be the reason? Is it not the advantages for us? Number two, what is the output of the semiconductor which we are going to get from India? Recently, we started manufacturing. Thank you, sir.
1: All right. Your first question, Mr. Sethupathi, is regarding Starlink barrier. There are two issues which the Honorable Minister of Telecom revealed. One is, of course, the revenue sharing arrangement of those Starlink is being worked out, because this is a different kind of service. Three licenses have already been given.
2: Yes.
1: One Web, Reliance Jio, and of course, Starlink Airtel was the third one. And there's the Amazon Kipiro, which is in the process right now. So one is revenue sharing. Second, satellite phone is something where security becomes an issue. So security compliances have to be looked at. When 2611 happened, there was a satellite call made,
2: yes,
1: which could not be traced. So we cannot allow a service which we cannot trace. Anything can happen in a large country like us. So I think that is one reason. Second, your second question is semicon output. You see, the output right now is not being disclosed by the companies. By the end of the year, we might have the first one coming out with something. But all I know is that about six of them are in the pipeline. And India is likely to become a dominating power in semicon. We just need to wait for some time for the statistics, Mr. Sethupathi.
2: Prachi. सवाल जानना चाह हम जानना चाहते थे जैसे प्राची वॉज ऑल्सो आस्किंग सेइंग शरद जी दैट यू नो द ऑयल प्राइसेस वी जस्ट प्राची रेड दैट यू नो नाउ देयर इज अ डील बिटवीन द यूएस एंड रशिया फॉर द डीजल सप्लाई ऑफ डीजल डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑल्दो इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द क्रूड दैट द डील इज अबाउट
1: बहुत ही एक हिंदी में शब्द होता है अनुभव विडंबना तो बहुत ही उसको इंग्लिश में डाइकॉटमी भी कहते हैं क्योंकि लिंडसे ग्राहम बिल जो पेश किया गया भारत के खिलाफ और चार देशों के खिलाफ लगाने के लिए और उसमें तो इसीलिए था क्योंकि भारत वहाँ से क्यों तेल लेता है तो आज जब जरूरत पड़ी तो देखिए अमेरिका को भी जब कीमतें बढ़ने लगी तो अपने लिए सोचना पड़ा और करना पड़ा तो दुनिया तो हैरान है उनके इस निर्णय से कि जब अपने क्योंकि इलेक्शंस वगैरह हैं वहाँ पर तो वोटर्स नाराज भी हो सकते हैं महंगी तेल की कीमत की वजह से तो देखिए जब जरूरत पड़ती है तो मैं आगे बोलना नहीं चाहता पर कुल मिला के बात देखें तो दुनिया के लिए अच्छा है दुश्मनी तो अच्छी नहीं है इस प्रकार की खटास कड़वाहट आपस में जल्दी निकले अच्छी
3: बात Time is a teacher.
1: Yeah.
2: Let's move on. The government is likely to announce a policy on stockpiling of critical minerals within a month, a move which is expected to ensure the supply of these resources to strategic sectors like defense, aerospace and energy, according to Secretary of Mines Keshav Chandra. He said that the government is also working on four dedicated critical minerals processing parks across Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Odisha to fast-track value addition for key battery materials.
3: 2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 13 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 734.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा पूंजी लगभग 10.5 अरब अमरीकी डॉलर से लुढ़ककर 604.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गया है सोने का भंडार 2.2 अरब अमरीकी डॉलर से कम होकर 106.4 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत की रिजर्व स्थिति 15 मिलियन से फिसलकर 4.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गई है वहीं विशेष आहरण अधिकार 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर लगभग 18.6 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर दर्ज है और इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं केशव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए मगर संक्षेप में क्योंकि समय की बाध्यता है
4: जी धन्यवाद कॉलेज नमस्कार मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे एक हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें अगर एफडी मैच्योर होने के बाद अगर जो पेमेंट है ज्यादा होती है तो ये बैंक में अगर बैंक अपने ही बैंक में 5 लाख के ऊपर कोई एक फॉर्म भरा जाता है ये क्या नियम है इसके ऊपर क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था जो ट्रांसफर हुई थी पेमेंट तो हमारी परमिशन फॉर्म होता है ये क्या चीज का होता है
1: अच्छा ये
4: पेमेंट हम ले जा सकते
1: देखिये केशव जी जो लार्ज पेमेंट्स होती है उसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो अब नए नियमों के अंतर्गत वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है और उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए जो बड़ी पेमेंट्स होती है 5 लाख से ऊपर उस पर जनरली बैंक से एक कॉन्फर्मेशन लेते हैं आजकल तो आप चेक भी बड़ा इशू करें तो आपको बैंक से पहले उसको प्री ऑथराइज करना पड़ता है वरना वो चेक क्लियर नहीं होता तो लार्ज पेमेंट्स पे आगे फ्रॉड को रोकने के लिए और उसकी ट्रैकिंग के लिए केशव जी ये प्रावधान किया गया है आपको एक फॉर्म साइन

0: करना पड़ता है। मुझे लगता है इसमें अल्टी थोड़ा सा हैसल तो होता है, पर कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए।
1: आगे बढ़ते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट प्रारूप इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा। नए प्रारूप के अंतर्गत 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर एमडीआर कैसे काम करता है, तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट के लिए 5 रुपए की फ्लैट रियायती दर लागू होती है। 5 रुपए की फ्लैट फीस पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को टैंक रिफिल करवाने पर ज्यादा लगने वाली प्रोसेसिंग फीस से बचाती है। 2000 रुपए से कम के सभी फ्यूल भुगतान पर शून्य एमडीआर रहता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने दिया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया है। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा राजनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका

वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदिस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का स्मरण किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने यात्रा के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। ये हमला कैप्टन स्मिथ पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान की कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर ने साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि PM राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार, और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज की जो चर्चा है वो है भारत की विरासत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और भारत के आत्मविश्वास के बारे में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार निहारिका, और हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि बाला, सीनियर इंडोलॉजिस्ट, डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विद्या भवन, और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहले हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हम अक्सर किसी भी सभ्यता को किताबों से, तारीखों से, इतिहास के माध्यम से या स्मारकों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन संग्रहालय, उत्सव या विश्वविद्यालय एक नया तरीका है हमारी विरासत के करीब आने का, उसे समझने का और उसे वास्तव में अनुभव करने का। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो भारत की विरासत के प्रति दृष्टिकोण किस तरह बदल रहा है और ये आम नागरिक के और करीब किस तरह आ रही है? और डॉक्टर सच्चिदानंद, पहले आपसे शुरुआत करते हैं।
2: देखिए, क्या है संस्कृति को हमारे देश में जो समझने का तरीका रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी जीवन का ऐसा एक अविभाज्य अंग रहा है प्रारंभ से ही, जो लगातार समय के साथ साथ अपने आप को और परिष्कृत करती गई है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन, इस बात को कहा जाता है। तो हर बार उसमें एक न एक परिष्कार होता है, एवोल्यूशन होता है। तो अभी जैसे ही पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि संस्कृति को जानने और समझने का एक जो पूरा का पूरा नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल गया है, और किस तरह से संस्कृति हमारे चिंतन की मुख्य धारा में आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में भी संस्कृति को लेकर जो जागृति है, जो प्रेरणा है, वो और अधिक बढ़ गई है। चाहे फिर वो हमारे सिर्फ म्यूजियम्स ही नहीं, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, हमारी लाइब्रेरीज हैं, हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इतना ही नहीं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको भी देखने का एक नज़रिया अभी पिछले कुछ समय में एकदम बदला है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग आजकल, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सोशल मीडिया पर संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने ग्रंथों की बात कर रहे हैं, अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो एक अलग तरह के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की

0: और हम लोग बढ़ रहे हैं।
1: और शायद मनोरंजन के तौर पे भी लोग और तरीके ढूंढने लगे हैं अपनी सभ्यता के और करीब आने के।
0: जी जी बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हम देखते हैं कि जहां भी कहीं संस्कृति पर कोई कुठाराघात होता है या हमारी शाश्वत मान्यताओं पर जब कभी कोई कुठाराघात होता है तो लोग ही इसका प्रतिकार करते हैं, समाज ही इसका प्रतिकार करता है। इसलिए देखा गया कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, फिर वो चाहे हमारी परंपराओं की हो, हमारे मेलों की हो, व्रत की हो, त्योहारों की हो, अनुष्ठानों की हो, उनको लेकर एक सकारात्मक भाव, क्योंकि लोगों ने ये भी समझा कि इनके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है और इसके पीछे फैक्ट्स कैसे रहे, तो हमारे ग्रंथों से कैसे वो सारी चीजें आई। तो ये कुल मिला के संस्कृति को देखने का एक नया नजरिया, नवोन्मेष एक तरह से कहा जा सकता है।
1: डॉक्टर शशि, इसमें मैं एक विचार और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल OTT के माध्यम से कई कहानियां हमारी सभ्यता से जुड़ी सामने आ रही हैं। आप अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करेंगे इस बारे में?
2: OTT के माध्यम से बहुत कुछ सामने आ रहा है, परंतु बहुत कुछ नहीं भी आ पा रहा। भारत में एक नई चेतना आई, उसके कई कारण है। जैसा कि जोशी जी ने कहा कि एक नवोन्मेष है, परंतु ये आप निश्चित समझ लीजिए कि क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हम कहते हैं प्रति क्षण जो एक नए नए वस्तुओं को अपने में संजो रही है, परिवर्तित भी हो रही है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी अस्मिता, भारत की आत्मा, भारत की पहचान उसकी संस्कृति है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, और भारत की संस्कृति विलक्षण इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर है। जो उसकी अंतरधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आप बाह्य देखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में कुछ ये चर्चाएं, कुछ बच्चों को शिक्षण में कुछ ये ऐड किया गया कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर आइए, आप भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर ध्यान दीजिए। तो दूसरी ओर मैं ये देख रही हूँ कि जब हमारे देश के लोग बाहर अब अधिक जाने लगे, पहले भी जाते थे परंतु अब अधिक जाने लगे, वे देखने लगे भारत का कितना सम्मान है, क्यों है, कहाँ कहाँ हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी है। लोग छोटी छोटी बातें भी देखते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, अरे इंडोनेशिया में रामायण है
1: जी।
2: अरे इंडोनेशिया में, थाईलैंड में रामायण है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जब उन्हें पता चलती हैं तो उनको एक स्वाभिमान जागृत होता है। दूसरा, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए यूरोप यात्रा पे, तो जब आइसलैंड आदि में गए वो लोग, तो वहां पर एक शब्द आया संबंध, कि आपकी भाषा में भी है, हमारी भाषा में भी है, तो लोगों में एक चेतना आई। जैसे कि हजारों शब्द सारी यूरोपियन भाषाओं में संस्कृत के बिखरे पड़े हैं, तो जब ये चर्चा के विषय बनते हैं। दूसरा, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इतिहास के विषय में बहुत सी कहानियां आपने सुननी होंगी, तो युवा वर्ग उस ओर आकर्षित होने लगा, जाने लगा, तो एक उनमें क्रांति आ रही है। फिर भारतीयों ने बहुत अपमान सहा, जहां भी जाते थे हम, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉलोनाइज्ड है, इतनी दास मानसिकता हो गई थी कि हम लोग सोचते थे जो बाहर है, जो विदेश में है, वही अच्छा है। परंतु जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ा पिछले 10-12 वर्षों में, जो भारत का सम्मान बढ़ा, वैसे वैसे भारतीयता का सम्मान बढ़ा, भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा, और जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ता है तो हमारी युवा पीढ़ी को स्वाभिमान की अनुभूति होती है, आत्मविश्वास जागता है, फिर उनको पता चलता है कि अच्छा ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने विश्व को इतना ज्ञान दिया, तो उनके और आत्मगौरव की अनुभूति होती है। तो बहुत सारे कारण है, मैं कहना चाहूंगी, जिनके कारण से आज भारत में एक आपको क्रांति का सा, क्रांति नहीं कह सकते परंतु उसके जैसा क्योंकि मन बदले हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि केवल मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप कितना रहेंगे, उनको इतने मन ठीक करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इतनी टेंशन है, उससे रिलैक्सेशन के लिए तो वो योग पर जाते हैं, ध्यान पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनको कहीं उसकी अनुभूति होती है तो उन्हें शांति मिलती है। आज का व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, पैसा बहुत हो गया लोगों के पास, पर शांति कहीं खो गई।
1: यानी संस्कृति और सभ्यता एक नया कारण बन गई है आत्मविश्वास और शांति के लिए। आत्मविश्वास की बात करेंगे, इन दोनों उत्तरों में बहुत ही खूबसूरत बातें निकल के आई, लेकिन पहले हम आत्मविश्वास की चर्चा कर लेते हैं। हम अक्सर सांस्कृतिक आत्मविश्वास की जब बात करते हैं तो उसकी क्या परिभाषा होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो परिभाषा किस तरह आपको बदलती हुई नजर आ रही है? और इसमें एक विचार हम और ये जोड़ सकते हैं कि जितना सम्मान हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देंगे, शायद वैश्विक स्तर पर उतना ही सम्मान और लोग भी

0: इसे देंगे। डॉक्टर सचिद आनंद, आपका क्या कहना है इस
1: ये
0: बारे में?
1: देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, इसकी जड़ें कहाँ हैं। आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश हुकूमत ने ये सोचा कि हम भारत पर कैसे हम पूरा राज कर सकते हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से महसूस हुई कि यहाँ इस देश की सांस्कृतिक जड़ें, जैसा भी प्रोफेसर शशि बाला जी भी बता रही थी कि सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनका, लोगों का विश्वास डिगाना बहुत कठिन है। संस्कृति की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसलिए बार बार हम किसका नाम लेते हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने इस बात को समझा और इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया। उसमें उन्होंने कहा ही ये कि भारतीयों को अगर किसी तरह से जीतना है तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें उनकी सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करें, उनके सांस्कृतिक आत्मविश्वास को डिगाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में तो उर्दू और संस्कृत में जो ग्रंथ हैं वो तो ब्रिटेन में, यूरोप की किसी भी एक बड़ी लाइब्रेरी की एक कोने में समा जाएं, इतनी उनकी वर्थ है, इतना ही उनका मूल्य है। इस तरह के न्यूनता बोध से शुरू किया। फिर उन्होंने जो हमारी हर एक चीज़ में कहा कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना आपके मान्यताओं में कोई लॉजिक है, ना आपकी परंपराओं में लॉजिक है, ना आपके शास्त्रों में लॉजिक है, ये सारी चीज़ें हमारी पीढ़ी के अंदर, तत्कालीन पीढ़ी के अंदर डालना शुरू किया। वहाँ से न्यूनता बोध प्रारंभ हुआ। तो ये जो इस समय का काल है, जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, आपने देखा होगा आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक भारतीय ज्ञान परंपरा की उस तरह से बात नहीं की गई।
0: बिल्कुल,
1: ये आप देख रहे हैं कि पिछले 12-14 साल में लगातार ऐसा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शोध हो रहे हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बातें लोगों के सामने ला रहे हैं। तो यानी क्या हुआ कि ये समझ में आया कि जो बातें हमको न्यूनता बोध दिलाती थी अनावश्यक रूप से, ये समझ में आया कि नहीं, उन सबके पीछे तर्क था, उन सबके पीछे शास्त्र था, उन सबके पीछे विज्ञान था, और इसलिए ये सारी बातें फिर से लौट के आई। यही है जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रहे हैं।
0: यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगी कि किसी भी संस्कृति की पहचान होती है उसकी भाषा और उसकी कहानियां, और कहानियों को सामने लाने का एक माध्यम होता है संग्रहालय। पिछले कुछ सालों में जैसे आपने जिक्र किया कि कई तरीके से कई सारी कहानियां, कई सारे शास्त्रों की बातें सामने आई है, और उसमें से दो महत्वपूर्ण ऐसे संग्रहालय हैं जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, यानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। और संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो संग्रहालय एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कितना महत्वपूर्ण जरिया है आपके नजरिए से?
1: पहले तो इस बात को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति थी। हमारे जैसे मंदिर हैं, मठ हैं या और भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर भी हम समाज की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उसको हम संग्रहित करके रखते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी कई बार उत्कीर्ण बहुत सारे शिलालेख होते थे, बहुत सुंदर से म्यूरल्स बनाए जाते थे, ये भी एक तरह का संग्रहालय था। लेकिन जब ये संग्रहालय शास्त्र हमारे समाज में आया, तब से हमने संग्रहालय को भी बहुत अच्छी तरह से अंगीकृत किया। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई जिसमें हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की। भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका जीवन कैसा था, उनका संघर्ष कैसा था, उन्होंने अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया, इसका पूरा का पूरा दस्तावेज उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलता है। न सिर्फ दस्तावेज मिलता है, आपको उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करने का, संवाद करने का भी अवसर मिलता है,
0: और शायद इतिहास को एक नए नजरिए से परखने का।
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आप उनके साथ जब संवाद करते हैं तो आप उनके साथ एक अपना एक जीवंत संपर्क बनाते हैं। तो कई लोग उससे अचंभित भी होते हैं कि अरे इनके बारे में तो मुझे ये मालूम ही नहीं था, इनके बारे में तो मैंने ये जानकारी ही नहीं ली थी। तो अपने आप में वो एक प्रधानमंत्री संग्रहालय उस तरह से परिपूर्ण हुआ। दूसरा, ये जो आपने कहा जनजातीय हमारे जो गौरव थे उनके आधार पर जो संग्रहालय बनाना, क्योंकि क्या हुआ कि जब स्वाधीनता संग्राम की बात आई तो फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही स्वाधीनता संग्राम का श्रेय दिया जाने लगा। हम ये भूल गए, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा था कि हम इसमें ऐसे गुमनाम या जो भुला दिए गए उन तमाम योद्धाओं को भी याद करने का प्रयास करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक तरह का एक आंदोलन हो गया कि हम ढूंढे हमारे ऐसे कौन कौन से योद्धा थे। अभी आप जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं, ये जो हमारा मानपुर का विद्रोह है उसको कोई जानता ही नहीं था, उसमें 1500 लोग लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो बातें आई तो इसलिए उनके जीवन पर एक गौरव गाथा उनकी मालूम पड़े, इसलिए हमारे देश में जनजातीय संग्रहालयों की ये जो योजना बनाई गई, इन तमाम योद्धाओं की जीवन गाथाएं वहां पर आए, लोग समझें कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारे किस किस महान योद्धा ने काम किया। तीसरा एक बहुत बड़ा संग्रहालय जो अभी बनने जा रहा है माननीय

0: प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वो है युग युगीन भारत, जो कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
1: अगर हम मंदिरों की बात करें तो काशी, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उज्जैन, केदारनाथ, आज के जमाने में ये तीर्थ स्थान है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इकोलॉजी का एक रूप है, ये कंजर्वेशन का एक रूप है, ये अर्बन डेवलपमेंट का भी एक रूप है। इन सब चीजों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए कितने आवश्यक है?
2: हमारे यहाँ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, हमारे यहाँ धर्मोदय और ज्ञानोदय दोनों का स्थान होता था। मंदिरों के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता था, उनके साथ शिक्षा व्यवस्थाएं भी होती थी, उनके साथ धर्म ग्रंथ भी जोड़े जाते थे, उनके साथ विद्वान जुड़े हुए होते थे, बहुत कुछ होता था, समाज कल्याण के भी काम होते थे। और समाज कल्याण जो है वो हमारे धर्म का आधार था, आज भी है। हम लोग दान और तप त्याग, जो भारत की संस्कृति का भाग है, वो किसी देश में नहीं है। तो मंदिर जो होते हैं, आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगी तो आप देखेंगी कि बहुत कुछ उत्कीर्ण है, परंतु उसको डीकोड करने की भी आवश्यकता है। तो जितने भी म्यूजियम हमारे हैं उनको और अधिक एक्टिवेट किया जाना चाहिए, ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश का जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ दिल्ली में ही जनपद पर है, बहुत कुछ एक्टिवेट करने की और ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमें अपने संग्रहालयों को और अधिक पुष्ट करने की और अधिक ज्ञान से प्राणवंत करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो देश की आवश्यकता है। हम केवल ऐसा नहीं कि एक म्यूजियम में आप गए, आपने ये मूर्तियां देखी, ये पेंटिंग्स देखी, उसका आपने एक फिजिकल रूप देखा और फिजिकली समझ लिया, नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, आध्यात्मिकता है, दर्शन है, ज्ञान है। मूर्ति कोई एक सुंदर वैसे ही कोई पीस ऑफ आर्ट नहीं है, इट्स नॉट मेड बाय कनोइजर्स ओनली। कहीं किसी मूर्ति में आपको नाम नहीं मिलेगा स्कल्प्टर का, किसी मंदिर में नहीं मिलेगा कि स्कल्प्टर कौन था, वो मूर्तिकार
1: जी
2: जो प्राणवंत कर देते थे और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, फिर भक्तों को उससे शक्ति मिलती थी। तो मंदिर हैं, ये सब कुछ हमारी देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जापान में एक को नोबेल प्राइज मिला है फास्टिंग पर, ईटिंग द सेल्फी या कुछ करके कुछ टाइटल था। हमारे यहाँ व्रत उपवास की परंपरा इतनी प्राचीन है, पर हम उसका साइंटिफिक रीजंस, उसका हमारे शरीर को क्या लाभ होगा, उसको हम नहीं बता पा रहे हैं।
1: शायद वो कहीं खो के रह गए हैं।
2: खोए नहीं है, उनको हमें पुनः एक ऐसे पटल पर लाने की आवश्यकता है जहाँ दुनिया देखे। जैसे मैंने एक रूसी सहेली से बात कर रही थी, एकादशी के विषय में बता रही थी, शी सेड बट आई फास्ट ऑन एकादशी, तो शी वाज सो हैप्पी, बहुत उसको प्रसन्नता हुई बताने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत भक्त हैं, भारत के मित्र हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, और अधिक से अधिक यदि हम अपनी संस्कृति के विषय में लोगों को जागृत करें, उनकी इच्छा है वो करना चाहिए।
1: यहाँ मुझे अंग्रेजी की एक बहुत खूबसूरत कहावत याद आ रही है, कहा जाता है एजुकेशन इज दैट विच कंपेल्स यू टू थिंक, नॉट मेयरली द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। शब्द शायद थोड़े इधर उधर होंगे लेकिन ले दे के बात एक ही है कि आगे की पीढ़ियों को एजुकेट करने की जरूरत है। उसका एक माध्यम हो गया मंदिर, एक माध्यम हो गया संग्रहालय, और एक माध्यम और है विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थित है और दुनिया भर के विद्वानों को विद्वान बनाने में नालंदा का किसी ना किसी तरह से योगदान रहा है। आज फिर एक बार नालंदा की चर्चा उठती है जब हम संस्कृति की बात करते हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद आपके विचार मैं इस पे जानना चाहूंगी।
0: हम जानते हैं कि जब प्राचीन भारत के समय में भारत के विश्वविद्यालय ऐसे हुआ करते थे जहां पूरे विश्व से लोग आते थे, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वल्लभी हो, चाहे उज्जैनी हो, तमाम विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग आए, उन्होंने पढ़ाई की, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, कहीं 20,000 कहीं 50,000 इस तरह के वहां पर विद्यार्थी हुआ करते थे। और जब आप आज भी नालंदा के वो खंडहर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इतना विस्तृत, इतना बड़ा परिसर इसी विश्वविद्यालय का होगा, यानी कितने सारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते होंगे, किस किस तरह की यहाँ पर शिक्षा ली जाती होगी। तो ये हमारी जो हमारे ज्ञान परंपरा का ये वैभव रहा है। लेकिन ये भी सोचा गया कि जब हम हर बार बात करेंगे तो क्या हम हर बार नालंदा के खंडहर ही दिखाएंगे क्या आधुनिक भारत में, या सिर्फ हम बख्तियार खिलजी को ही कोसते रहेंगे कि उन्होंने ये सारा विध्वंस किया, या हम कुछ नवनिर्माण भी करना चाहते हैं, ज्ञान के नए केंद्र भी खोलना चाहते हैं, ऐसे केंद्र जहाँ पर ज्ञान की नई नई विधाओं का विस्तार हो, नई नई बातें वहाँ पर हो, नई नई चर्चाएं वहाँ हो। इसलिए आपने देखा कि आज जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है वो अपने आप में एक नया विश्व के लिए एक नया प्रतिमान बना है, एक अपने आप में एक अपना एक स्टैंडर्ड उसने स्थापित कर दिया कि ऐसी वास्तु,

0: ऐसा भव्य परिसर, ऐसी सुंदर वहां सुविधाएं कि वहां कोई भी शोधार्थी, कोई भी ज्ञानार्जन के लिए गया हुआ व्यक्ति अपने आप को उसके साथ जोड़ सके, उस पूरे परिसर की उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसका जो स्पंदन है, उसके साथ वो जोड़ सके, इसलिए वो पूरा विश्वविद्यालय उस तरह से है। और वहां पे फिर नए नए विषयों के ऊपर शोध, नए नए विषयों के ऊपर नवाचार, ये सारी बातें वहां हो रही। और सिर्फ नालंदा का ही विषय नहीं है, देश में आज IITs की संख्या कितनी हो गई। आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ 5 या 6 IITs हुआ करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी संख्या बहुत सीमित थी। आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत सीमित संख्या में हुआ करते थे। आज देश में कितने सारे IITs खुल गए हैं, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, कितने एम्स खुल गए हैं, इसके साथ ही आईसर, सोशल साइंस रिसर्च और साइंस रिसर्च, इस पर भी पढ़ाई करवाने के लिए संस्थान खुल गए हैं, जहां वहां पे एक नई तरह की पढ़ाई हो रही है। टेक्नोलॉजी के लिए IIIT कितने सारे खुल गए हैं, ताकि टेक्नोलॉजी की बात हो और श्रेष्ठतम बातों के ऊपर चर्चा हो, आधुनिकतम ज्ञान की चर्चा हो। कौन था, आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 15 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सेमीकंडक्टर की फील्ड में जाएगा, अपने चिप का निर्माण करेगा। कब सोचा था हमने कि भारत अपने चिप का निर्माण करेगा? आज आप जानते हैं 140 करोड़ का हमारा देश है। सबसे बड़ी लड़ाई पूरे विश्व में आज जो हो रही है वो डिजिटल डेटा की हो रही है। डेटा पे जिसका प्रभुत्व होगा वो पूरे विश्व पर राज करने वाला है, हम आप सब देखते हैं। तो आज भारत ने ये सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे, चिप बनाएंगे, तो डेटा हमारा होगा, डेटा पर प्रभुत्व हमारा होगा, तो फिर हम पर कोई राज नहीं कर सकता, फिर हम दुनिया पर राज करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो एक शिक्षा का एक, ये जो एक नवाचार है, इसको सोचने की जरूरत है। सिर्फ विश्वविद्यालय खोलना नहीं, विश्वविद्यालयों में कौन सा ज्ञान दिया जाएगा, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक तरह से सारे ज्ञान का अमलगमीशन कराती है। भारतीय ज्ञान परंपरा भी है और आधुनिकतम ज्ञान भी है, दोनों को साथ लेके चलती है। वहां आपको संस्कृति का ज्ञान भी है, वहां पर विज्ञान का भी ज्ञान है। तो जिस तरह से भारत की पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जहां पर हम एक संपूर्ण विकास, विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की बात करते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को पाना चाहते हैं, इसलिए हम हमारे शैक्षणिक संस्थानों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।
1: मेरा ख्याल है हर विषय को एक जगह मिल गई है हमारे विश्वविद्यालयों में, जो कि पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, पहले भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी, चाहे कोई भी राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, एक, क्योंकि अगर एक किंगडम किसी को चलाना है उसे हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए।
0: नहीं, वैसा ही नहीं है। देखिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म हो गया। पहले अगर कोई बच्चा या बच्ची मेडिसिन का कोर्स कर रहा है, तो फिर उसको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो संगीत का एक ऑप्शनल ले ले या विजुअल आर्ट का कोई ऑप्शनल ले ले। आज ये सुविधा है ना कि सिर्फ आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन के विद्यार्थी नहीं है, आप संगीत भी सीख रहे हैं, आप विजुअल आर्ट भी सीख रहे हैं, आप सिरेमिक्स भी सीख रहे हैं, आप सिर्फ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नहीं है, आपको लगता है तो आप थोड़ा सा साहित्य का भी पढ़ रहे हैं कुछ तो भी। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपकी सारी ज्ञान की जो चक्षु हैं, ज्ञान की जो सारी दिशाएं हैं, वो खुली रहना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात है। आज भारत के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हैं, और ये युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप भी जानते हैं कि अगर ये युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे, तो ये पूरे विश्व पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। तो इसलिए उन युवाओं को श्रेष्ठतम अवसर प्राप्त हों, ये बात हमने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सोची, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर नए नए कोर्सेज की बात करके, नवाचार की बात करके, उनको इस दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: एक सवाल मेरा आप दोनों से है, और वो ये है, रण उत्सव जैसे उत्सव जो हैं वो जीवन संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर मैं अपने देश के बाकी राज्यों की भाषाओं को, उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करूं, या फिर केवल समझने की कोशिश करूं, क्या वो मुझमें राष्ट्रीय जुड़ाव की एक अधिक भावना जागरूक कर सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: भारत में ये देखा जाता है, हम लोग भारतीय जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिल हूँ, परंतु हम सब भारतीय हैं, ये विलक्षण बात है। उसके पीछे बहुत सारा आधार है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, संपूर्ण भारत ज्ञान, संस्कृति और बहुत सारे संस्कृति के आयाम उनके माध्यम से एक है। स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, अनेक उत्सवों का उदाहरण आपको दिया जा सकता है। तो भारत कभी भी बटा हुआ नहीं था, और भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, उसका ज्ञान है, जिसके आधार पर भारत भारत है। और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं अरे इंडिया कहा या भारत कहा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ नहीं,

0: फिर आज हम केवल नालंदा तक्षशिला उदयपुरी विक्रमशिला इत्यादि थोड़े से जो हमें पता है उन विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने उलटकर देखिए कि भारत में जो विज्ञान था, जो वैज्ञानिक दिए वो किसने दिए? वो आश्रमों और गुरुकुलों ने दिए। जब अंग्रेज आए, ये तो हमारी प्राचीन परंपराएं रही, अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। उस समय पूरा भारत 100% शिक्षित था, आज हम कहते हैं प्रतिशत ढूंढते हैं कितना भारत कितने प्रतिशत शिक्षित है, तो एक सारी व्यवस्था जो है उसको बदल दिया गया। आज हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और उसकी बहुत सारी बातें चर्चाएं करते हैं, परंतु गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था तो पहले उसका पूरा टेस्ट लिया जाता था। हम कहते हैं द्विज, जो विद्यार्थी होता था उसको कुछ समय आचार्य केवल अपने मन में रखता था कि ये इसके अंदर क्या योग्यता है और यथा योग्यता के अनुसार मुझे इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो वो उस समय था, आज भारत में उसके लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो उस समय की व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गईं या समाप्त कर दी गईं, कुछ भी कह सकते हैं। तो भारत का वैज्ञानिक योगदान हमारे गुरुकुलों और आश्रमों से भी आया है। विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, गुरुकुल और आश्रमों की हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज यदि हमें अपने बच्चे को गुरुकुल या आश्रम में भेजना है तो हम सोचने में पड़ जाते हैं, परंतु उस व्यवस्था के प्रति हमारे मन में आदर तभी आएगा जब हम उनके इतिहास के विषय में जानेंगे।
1: ये जो आपने भाषा की बात कही उसमें मैं दो चीजें जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि वो आज की चर्चा के लिए शायद वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये विचार आया माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में।
2: मैं इसी का जिक्र करने वाली थी, पहले हम कहा करते थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
1: हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया उसमें, देखिए कि उन्होंने युग्म बनाए, दो दो राज्यों के युग्म बनाए। अगर आप गुजरात हैं तो गुजरात के साथ पांडिचेरी है, पश्चिम बंगाल है तो उसके साथ तमिलनाडु, यानी क्या किया कि इन प्रांतों के बीच में आपस में मेल जोल बढ़े, इन प्रांतों के लोग आपस में मिले, एक दूसरे के साथ बात करें, संवाद करें, कार्यक्रम आयोजित करें, तो उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जानने की बात होगी। फिर काशी तमिल संगम प्रारंभ किया। ये काशी तमिल संगम अपने आप में एक बहुत ही अभिनव योजना थी, क्योंकि जैसा तीर्थ यात्रा के लिए तमिलनाडु के लोगों का काशी आना या काशी के लोगों का तमिलनाडु या अन्य दक्षिण प्रांतों में जाना एक आम बात थी, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे की परंपराओं को जानना, साथ में रहकर उत्सव मनाना, ये पिछले कुछ सालों से काशी तमिल संगम के रूप में काशी में प्रारंभ किया गया और उसमें इतनी अपार सफलता मिली, बहुत सारी बातें लोगों को काशी तमिल संगम के माध्यम से सीखने को मिली। अभी एक और नवाचार हुआ है, अलग अलग राज्यों के जो लोक भवन हैं जहां पर माननीय राज्यपाल रहते हैं, अब वो राज्यपाल उस राज्य के जो राज्य दिवस होते हैं उनको अपने लोक भवन में मनाते हैं। ये अच्छा। कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि केरल के माननीय राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश दिवस है, तो केरल के राज्यपाल अपने लोक भवन में मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे और उस दिन मध्य प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश की परंपराएं, मध्य प्रदेश का गीत, ये सब होगा। यानी केरल के लोगों को मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानने समझने का अवसर मिलेगा या पंजाब के। तो इस तरह से ये अलग अलग नवाचार करके देश को एकता के सूत्र में फिर से मजबूती से बांधे रखना, या तीन भाषा का अभी जो एक सूत्र आया है जिसमें तीन भाषाएं पढ़ना विद्यार्थी को अनिवार्य है, उसके आधार पर वो विद्यार्थी अपनी एक मातृभाषा भी ले सकता है, एक अन्य भारतीय भाषा भी ले सकता है, इसके आधार पर पढ़ाई करेगा विद्यार्थी, या मातृभाषा में शिक्षा भी, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की तो मातृभाषा में शिक्षा करना, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं, मेडिकल के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं। यानी आप देखिए कि हम कहां से कहां सोच है, इस बारे में विचार करना चाहिए था कि अब हमने अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया है।
3: एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है
2: जी। और इसी में एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि द बेसिस ऑफ लिटरेचर इज लाइफ। सो जैसा हम जीवन को परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अपनी संस्कृति

0: को जानेंगे वैसा ही हमारा साहित्य होगा। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसकी कड़ी और कई विचारों से और शब्दों से जोड़ी जा सकती है। पहला सवाल जो है वो पीपल्स पद्मा पर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पीपल्स पद्मा लोगों का ध्यान केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों से हटाकर उन लोगों की ओर ले जाता है जो समुदाय में चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा विचार ये है कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है और इसे किस तरह हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं?
1: देखिए, पीपल्स पद्मा की जो बात आपने कही, अभी तक ये जो राष्ट्रीय अलंकरण होते थे, चाहे वो हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो थे, ऐसा लोगों को लगता था कि एक निश्चित अभिजात्य वर्ग के लोगों तक ही वो सीमित थे, क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी बहुत पारदर्शी नहीं थी। और फिर जो लोग चुने जाते थे, बहुत बार ये धारणा होती थी कि अच्छा, इनको तो मिलना ही था क्योंकि ये एक उस अभिजात्य वर्ग से आते हैं। तो ये एक सामान्य लोगों से बिल्कुल कट के ये राष्ट्रीय अलंकरण रह गए थे। इसका जब से लोकतांत्रिकरण हुआ, आवेदन मंगाए जाने लगे, पोर्टल पे आवेदन आने लगे, और लोगों से कहा गया कि आप अपना आवेदन ऐसे व्यक्ति का भी नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने समाज के क्षेत्र में कुछ किया है। और ऐसे में हमने देखा कि ऐसे ऐसे समाज के क्षेत्र के लोग जो अपने कहीं दूर किसी अंचल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जैसे बीज बचाने का काम करने वाली कोई हमारी माई है जो हमारे मौलिक बीजों को बचा रही है कृषि के लिए,
0: जी
1: ताकि हमारी जो मौलिक फसल है वो आगे जिंदा रहे, या कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अपने सीमित संसाधनों से एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, मतलब किसी को पेंशन मिली है वो पूरी की पूरी पेंशन झोंक के पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, या कोई है जो हमारी पारंपरिक दवाइयों को अपने खर्चे पे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंची। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जब शुरू किया गया और खोजा गया कि भाई ऐसे लोग जिनके पास कई बार पैर में पहनने की चप्पल तक नहीं है, वो लोग अपने पूरा का पूरा जीवन दूसरे के उत्कर्ष में लगा रहे हैं, तो क्या ये एक अच्छे देश का ये कर्तव्य नहीं कि हम उनको सम्मानित करें, हम उनको जनता के प्रकाश में लाएं कि जनता देखे उनको कि ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो ये पीपल्स पद्मा की जो अवधारणा आई, और इसकी प्रक्रिया में हमने देखा कि एक ऐसा व्यापक समुदाय जुड़ा और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हाँ, ये हैं हमारे सही हीरोज, ये हैं हमारे राष्ट्र के नायक जिनका अनुकरण हमें करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल पद्मा के लिए नॉमिनेट करने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे तमाम लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। अब जो लोग हमारे पद्मा अवार्ड विनर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, अब समाज में उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम बदल गया है, एक अलग तरह का सम्मान है। और न सिर्फ उन अवार्डीज के प्रति बल्कि ऐसे अनेक लोग जो काम कर रहे हैं उनके प्रति भी समाज का एक बहुत सकारात्मक, बहुत सम्मानजनक नजरिया हो
0: जी। डॉक्टर शशि, आप क्या कहेंगी इस
2: जी
0: बारे में?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम प्रसिद्ध लोगों को प्रसिद्ध कर रहे थे, अब हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। समाज का आलोडन होता है और उसमें जो सेल्फ नॉमिनेशन है उसको भी एड कर दिया गया है, जिससे कि ये आत्मस्तुति नहीं है, परंतु व्यक्ति ने यदि कोई कार्य किया है तो देश के समक्ष आने का एक साधन बना है। तो इससे क्या है कि अनेक प्रकार के लोग जो अनजाने हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके कार्य को कोई नहीं जानता, वो उनके नाम उभर कर आ रहे हैं और उनको उससे मनोबल मिलता है। वो कोई एकमात्र अलंकरण नहीं होता, उससे व्यक्ति को मनोबल इतना मिलता है कि अच्छा, मुझे इस कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया गया, अब मेरे ऊपर और बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, मुझे और बढ़ चढ़ कर ये कार्य करना है, तो वो और बढ़कर करता है। दूसरा, आपने प्रश्न किया संस्कृति के विषय में। संस्कृति का अध्ययन जो है वो भी हमारी पीढ़ी को और करना पड़ेगा, हमारे से अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी भी आ गई है। तो मैं जहां जहां जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ये ऐसा अनुभव होता है कि संस्कृति का अध्ययन करके ठीक से लॉजिकली और एक ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को देंगे तो बच्चे तैयार हैं, अगली पीढ़ी तैयार है। यदि हमने नहीं दिया तो हम चूक जाएंगे, बहुत सा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा।
1: 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा की थी, उसमें एक प्रण था अपनी विरासत पर गर्व
0: जी।
1: तो यही मुझे लगता है कि बॉटम लाइन है, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और अपनी पीढ़ी को भी एक ऐसा वातावरण दें कि वो भी अपनी विरासत पर गर्व कर सके, तो वो संस्कृति को आगे ले जाएंगे।
2: और वो विरासत पर गर्व तब होगा जब हमें उसकी महानता का ज्ञान होगा।
0: शायद हमारा एक गोल, हमारा एक इंटेंशन इस चर्चा के जरिए वही था कि अपनी विरासत की महानता को सामने लाया जाए। ये हमारी स्पेशल सीरीज है जन सेवा से देश सेवा, और संस्कृति के कई ऐसे विचार हैं जो शायद अगली वार्तालाप

0: में हम जिनका जिक्र करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशि बाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தியறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
3: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
2: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिश नाकाम कर दी है। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गई। नई दिल्ली में 4 दिन के इस आयोजन में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं, बहुपक्षीय सहयोग और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हुआ। इसने ग्लोबल डिजिटल क्रिएटर के तौर पर भारत की स्थिति को और मजबूत किया। सीमाओं के बिना विस्तार थीम पर आधारित इस आयोजन के आखिरी दिन उच्च स्तरीय नीति और मानकीकरण को जमीनी स्तर पर लागू करने पर बल दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों को याद किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने यात्रा के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ मच्छर पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत

की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी लगभग 3,700 करोड़ रुपए की लागत की मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேரம் 8:40 ஆகாஷ்வாணி 100.1 MHz FM Gold.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: கட்டணா ஸ்வயமகி கட்டுப்படு பாரதிய சேனா.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே விஷால் ஷர்மா. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
3: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
4: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
2: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
5: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
2: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके

0: पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
4: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
3: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में

0: बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
2: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
3: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम

लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक

और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय। कल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में हैं, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था। यानी बालिका शिक्षा का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था। फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और न चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए, ऐसा है कि सीसीआरटी दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेज तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों स्पर्धाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सीसीआरटी ये आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है। तो ये बहुत अहम, एक बहुत अच्छा एक कार्य है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग, बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
0: सीसीआरटी के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कला ग्राम तो निश्चित ही ये दो डिवीजन है और इसके पीछे सोच है। कला गुरुकुल जहाँ हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का, क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे किससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं भी मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स, इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी है। तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहाँ पे सबको दी जाएगी, देश भर के जितने आर्टिस्ट है उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहाँ से आर्ट वर्क जो बनने वाले है वो बेचे भी जाएंगे जिसमें एक जनरेशन भी होगा।
0: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
1: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप्स जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स जो है कि हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम एमओयू भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं। कुछ एनजीओस जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, सीएसआर पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर

0: सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जब तक कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी एक्टिविटीज में भी हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा, फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे, फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कल्चरल प्रोडक्ट्स ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेज जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए, और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे सीसीआईटी जो जहाँ पर एस्टेब्लिश है द्वारका में, तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है, हमारी प्रांगण में हम वहाँ पर एक कलाग्राम वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है ये एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप्स स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिजन्स के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा, एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स लोग लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे, ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है, तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं, जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर, तो ऐसे जो जो ओरिजिनल इंडिजिनस काम करते हैं वो प्रैक्टिकल काम करते हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्प्टर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे और उनको हम जगह भी देंगे और उनके माध्यम से बाकी लोग भी काम सीखेंगे, वो भी एक काम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में है लोग कि जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, उसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते ऐसा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले हैं, बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स भारत में कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।

अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुल निगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

कला की सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभाह करती है। और इसी क्रम में हमारी अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के ना होने में बसती है। आशिमा की कला इसी ना होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है। छूटी हुई जगहें, मिटे हुए निशान।

0: और बीते रिश्तों की परछाइयां अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।
1: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी। व्हाट वाज हियर, ये उसके बारे में है, डज मैटर हैव मेमोरी। तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयाज में, विच इज वहाँ पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में, और वहाँ पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई। आई बिगैन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि इतनी अच्छी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको। वेरी ऑफन आई यूज टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशंस हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ। सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इनटू कंटेम्पररी आर्ट।
2: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ, उनकी डिटेल्स, जो मटेरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक।
1: साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी। तो ये स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई, मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी। बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहाँ जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है, तो वो ना वेयर आउट हो जाता है। तो दोज आर द एविडेंसेस दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेज ऑफ चेंज ऑफ मैटर यू कैन मेक आउट दैट दे डू रिमेम्बर थिंग्स। एंड वेरी ऑफन यू गो टू अ टेम्पल, वहाँ पर भी आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं। वहाँ पर जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम देयर, और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, विशेज मांगी हैं, तो जब आप जाते हो तो यू ऑटोमेटिकली गेट सम सुकून मिलता है। तो मैटर एक्चुअली रिमेम्बर करता है कुछ चीज़, और वो हमारे को ट्रांसमिट करता है साइलेंटली। और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्ट वर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है। क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जौन सा है, ये मैंने अपने आप बनाया है, ये बनाया है वेस्ट सिल्क का, और वेस्ट सिल्क बहुत फ्रेजाइल होता है। सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीज़ों की, ये सब चीज़ों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है, और ये सब मेरे आर्टवर्क में मैं नाजुकपन दिखाना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ किया है क्लॉथ में, डबल ट्रिपल लेयर के, काफ़ी लेयर्स के ऑर्गेन्जा किए हैं, और फिर हैंड स्टिचिंग करी है, और वो भी नाजुक दिखा रही है। और फिर ये सारी चीज़ें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है। तो मैंने ये सब चीज़ें जो फेंकी हुई चीज़ें थी, उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीज़ें जो होती हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफ़ी पूरी हैं, इमेजेस कंप्लीट। उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी, मैंने उनको थोड़ा सा डिसॉल्व किया है, ये डिसॉल्व किया है बाय बर्निंग, बाय स्टिचिंग, बाय यू नो फोटोग्राफिकली ट्रांसफरिंग थिंग्स।
0: अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी, सौजन्य नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर, एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है। और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित है हमारा लघु रूपक

0: छत पर उगती जिंदगी।
1: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
2: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
1: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना, खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
2: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेलें।
1: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
2: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात, ये हमें धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
2: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
1: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा, और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
2: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशि अरोड़ा कहती हैं,
3: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में तीन बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रोमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बालकनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाए वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहां के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची की, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, पर हम उसे देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी, धूप का जब ध्यान रख लें, उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इनडोर पौधे, छाए वाले, वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि घर में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहां पे कुछ भी खाना बन रहा है तो दो चीजें, वहां पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड ट्रिमिंग्स होता है, कुछ होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूं। मैं यहां पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूं कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम्स बनाती हूं। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए, एयर फ्लो के लिए हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले अपने खाने का जो भी हमारा ट्रिमिंग्स होती है वो डालते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन पार्ट हुआ, फिर डालते हैं हम कार्बन पार्ट, जितने भी सूखी हुई चीजें होती हैं। कहीं से डिलीवरी आती है चेक करिए, अगर वो पेपर कार्डबोर्ड रिसाइक्लेबल है तो उसको फाड़िए, छोटा छोटा करिए, जितने सूखे पत्ते गिर, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये पत्ते डालिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन का ऑल्टरनेटिव लेयर। पहले हमने खूब सारा नीचे ग्रीन ये ट्रिमिंग्स डाल दिया, फिर ब्राउन कार्बन डालिए, आपने ये ऑल्टरनेटिव लेयर बनाई और इस पे हल्का सा पानी का छिड़काव करा और फिर लास्ट में कार्बन डाल दिया और ढक दिया। थोड़े टाइम में ये कॉम्पोस्ट बन जाता है। इसको हिलाते रहना डेली और इसको एक थोड़ा सा शेडी

0: डार्क सेमी शेड एरिया में जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं उसे कर दीजिए, जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा एक कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए, तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है, तो जिस गमले में या जगह पे पौधा लगा हुआ है उसके साइड में आप थोड़ा सा खोद के ये खाने का जो मिक्सचर है अंदर डाल के मिट्टी से ढक दें। अर्थ वो अपने आप उसको तोड़ेगी और नीचे पोषण देगी इन सब पौधों को। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कभी चावल बनता है, दाल बनता है, इनको धोइए, इनका पानी आप फेंकिए मत, इनका पानी आप अपने पौधों को दीजिए, उसे थोड़े दूसरे पानी में डाइल्यूट करें, डाल दें। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं अपने पौधों को पोषण देने के, बट जो मेन चीज है, पहले धूप देखिए, उसके बाद आप मिट्टी देखिए, और फिर हम डिटेल में जाते हैं कि अच्छा इसको और कैसे बड़ा करें। पर ग्रोइंग अ प्लांट बहुत सिंपल है, जिसे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। मेरा छत ना, जिसे बोलते हैं एक बायोडाइवर्स एरिया है, मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल हैं, सीजनल फूल हैं। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में प्रिटी मच सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं, बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है, जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई, तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है, तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है। तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे, उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा, और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितने मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है,
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति।
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

हरियाली की इस बात के बाद अब पतझड़ का वो हिस्सा जब हम उन्हें याद करते हैं जो जाकर भी कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खान, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। दो हजार 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना को सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं

याद किया जाएगा। सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना, और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना। उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी, और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति

0: संस्कृति भारती का ये अंक नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर के हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर तक आवश्यक नगद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूद तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा। सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर GST लगाने की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा गलत है। उसने बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 57वीं GST परिषद की सिफारिश के बाद GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर पर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में 15 लोगों की मौत। और कल इंदौर में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
1: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदिस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों को याद किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि पूरे अफ्रीका में भारत के सहयोग से 4.5 अरब डॉलर की लागत वाली 220 से ज्यादा विकास परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। यह हमला कैप्टन स्मिथ मच्छर पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ मच्छर पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सोमवार से साइप्रस और ग्रीस का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 12 और 13 अक्टूबर को साइप्रस की यात्रा के दौरान श्री सिंह साइप्रस के रक्षा मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक करेंगे। इस यात्रा से विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग सशक्त होने की आशा है। ग्रीस में रक्षा सचिव वरिष्ठ रक्षा और सैन्य नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस यात्रा का काफी महत्व है। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अपने सहयोगियों के साथ रक्षा और सामरिक सहयोगों को और सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोस और उसके परे घटनाक्रमों और उनके

0: रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और राजनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ देश को विश्व से अलग थलग करना नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिज़्या के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्षों से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। यह समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस फैसले की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। यूक्रेन के हमलों से रूस की तेल रिफाइनरियों में उत्पादन प्रभावित हुआ और इस कारण डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए। वहीं यमन के ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती द्वारा सऊदी अरब में किए गए हमलों में ईंधन आपूर्ति को और भी बाधित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस तुरंत 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन, उसके बाद 1 मिलियन टन और रूसी रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त 3 मिलियन टन की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने अमेरिका के किसानों, पशुपालकों और ट्रक चालकों के लिए ईंधन की लागत कम करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: पाकिस्तान में पिछले एक दशक में दर्ज ईश निंदा मामलों का रिकॉर्ड आपराधिक कानून के अंतर्गत धार्मिक आरोपों से मानवीय जीवन पर खतरे को उजागर करता है। इस वर्ष इस तरह के मामलों की संख्या और बढ़ गई है। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे आरोप फुसफुसाहट से शुरू होकर कारावास, मृत्युदंड या परिवारों के घरों के बाहर भीड़ के जमावड़े में बदल सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू और अहमदी समुदायों के लिए खतरा कानून के बाहर काम करने वाले चरम पंथियों से कहीं अधिक व्यापक है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के इशनिंदा प्रावधानों का बार बार व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद और अन्य प्रकार की सामाजिक शत्रुता को निपटाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। ईसाई, हिंदू और अहमदी समुदायों से जुड़े मामले दर्शाते हैं कि कैसे धार्मिक आरोप गिरफ्तारी, कारावास, मृत्युदंड या भीड़ हिंसा में परिवर्तित हो सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। कल शाम रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बरहम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर पर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोगों की मौत और कल इंदौर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष बी एब्राहम। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we will be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-4044, and 2371-7117. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप बेहिचक होकर डायल कीजिए इन नंबरों पर. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0464 और 2371-7117. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी ज़रूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Indian stock markets snap their 8-week losing streak. Sensex and Nifty gains around 0.5%. Wall Street wraps up week with notable gains. And global crude oil prices rise during the week.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार 8 हफ्तों की गिरावट के बाद इस सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.5% का उछाल आया. वॉल स्ट्रीट इस सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: Listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Shrotao, hamare saath hamare pehle caller jud chuke hain. Ye Rajasthan se hain. Inka naam hai Rajesh. राजेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्ते. नमस्ते मैडम. ये मेरा सवाल ये था मैडम कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनियां है जो ज्यादा चलन आ रहा है मैडम इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कारों का, तो आने वाले भविष्य में 5 साल का अगर अनुमान लेके चले तो इनका भविष्य किस प्रकार का रहेगा आने वाले 5 साल के लिए?
3: चलिए राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है. तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. जिस प्रकार से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है और एनर्जी सुरक्षा को लेके दुनिया भर में बात की जा रही है
1: जी,
3: तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल आप देखें तो हर साल बढ़ रही है. जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो भी उसमें निवेश अपना बढ़ा रही हैं. और इसका जो बुनियादी ढांचा है जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें जिस प्रकार से लिथियम बैटरीज में डेवलपमेंट हो रहा है उसकी रेंज भी बढ़ती जा रही है, कीमतें कम हो रही हैं और इसका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे जैसे ये और फैलेगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बढ़ती हुई दिखाई देंगी. और अभी जो लोगों को समस्याएं आती हैं प्राची अनुभा इसमें, वो ये आती है कि हम दूर गाड़ी अगर ले जाना चाहें तो भाई वहाँ पर हमको चार्जिंग का मिलेगा. तो अब तो गाड़ी मुझे लगता है 400-500 किलोमीटर वाली गाड़ी आम हो गई है. और अब तो मैंने एक पढ़ रहा था कहीं पर 1100 किलोमीटर की भी गाड़ी आ रही है जो 1100 किलोमीटर चलती है. तो ये तो लगता है जैसे आप पेट्रोल डीजल भरवा के भूल जाते हैं तो ऐसे आप चार्ज करके भी काफी टाइम के लिए भूल सकते हैं. तो बहुत उज्ज्वल राजेश जी भविष्य इसका अगले आने वाले सालों में नजर आता है.
1: और शरद जी, जिज्ञासा लोगों में इस प्रकार भी है ईवी को लेकर के कि एक तो आपने डिस्टेंस की बात बताई कि लंबी अगर दूरी पर लेकर के जाते हैं तो क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं अनुभव, लेकिन ये भी है कि गुरुग्राम जैसे इलाके में जहाँ पर कई बार पानी जम जाता है वहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम मतलब कर पाएंगे आवागमन?
3: देखिए, जैसे जैसे इनोवेशन होता है तो देश के अनुसार गाड़ियां बनाई जाती है. तो जो इसकी मशीनरी होती है, जो मोटर

0: होती है, बेसिकली इसमें मोटर होती है
1: जी।
0: तो उसकी जो पोजीशनिंग है, मुझे पता लगा कि कुछ कंपनियां पोजीशनिंग उसको थोड़े हायर लेवल पे कर रही हैं, पहले मोटर नीचे होती थी। तो आप वो कस्टमाइज कर सकते हैं, आप जिन इलाकों में पानी भरता है तो आप वहां पर उसकी मोटर की पोजीशनिंग आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कि पानी उसको प्रभावित ना कर सके। तो मुझे लगता है ये भी समस्या का समाधान निकल आएगा।
1: लेट्स गो ओवर टू आवर नेक्स्ट लिसनर, जय कुमार इज कॉलिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद। जय कुमार, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते
2: मंत्रा टीम को नमस्कार और कोहली जी को विशेष नमस्कार।
0: नमस्कार जय कुमार जी, नमस्कार।
2: मेरा एक सवाल है जो पिछले किसी मार्केट मंत्रा में बोला गया था कि जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है सोना कमजोर हो जाता है
0: जी,
2: तो इसका क्या लॉजिक है? और हमारी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट निफ्टी इंडेक्स में अभी फायदेमंद होगा या आगे चल के फायदेमंद होगा?
0: जय कुमार जी, आपका पहला सवाल डॉलर जब मजबूत होता है तो सोना क्यों कमजोर होता है, उसका कारण ये है कि डॉलर की जो दबदबा है, डॉलर का जो रुतबा है, डॉलर का जो पूरा का पूरा सुप्रीमेसी है, वो डॉलर इस समय एक इंटरनेशनल करेंसी है। आप देखें तो दुनिया का अभी भी 60-70% व्यापार, बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो 90% अभी भी डॉलर में होती है, और उधार जो लिया जाता है दुनिया में, लोन्स लिए जाते हैं, वो सब डॉलर में लिए जाते हैं। तो मेजर ऑफ वैल्यू डॉलर है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। तो जब डॉलर कमजोर होता है, इसको आप मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, डॉलर जब कमजोर होता है तो ऐसा लगने लगता है सोने के निवेशकों को, ट्रेडर्स को, कि अब डॉलर नहीं तो क्या, तो डॉलर नहीं तो गोल्ड ही ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। और डॉलर जब मजबूत होता है तो फिर ऐसे में गोल्ड का थोड़ा सा चमक कम हो जाती है। आने वाले सालों में मुझे लग रहा है जिस प्रकार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत है, $40 trillion से ऊपर का कर्ज है और बाकी चीजों को भी देखते हुए, ऐसा लग रहा है कि डॉलर की परचेजिंग पावर थोड़ी घट रही है। तो जैसे जैसे घटेगी, इसीलिए सोने का भविष्य जब उज्जवल बताया जाता है तो उसका एक कारण यह रहता है कि डॉलर का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं नजर आता है। तो ये आपने दूसरा निफ्टी का पूछा, निफ्टी का,
1: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का की भविष्य आप कैसे देखते हैं कि अभी बेटर?
0: देखिए अभी तो बहुत चैलेंजिंग टाइम से निफ्टी और सेंसेक्स गुजर रही है, आप देखते हैं। हालांकि 8 हफ्ते का एक जो नजर लगी हुई थी वो थोड़ी सी हटी है, हल्का सा ऊपर गया है, पर अभी मुझे लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट से हमें थोड़ा खतरा है, क्योंकि वहां पर जो एक ये डेट बबल बन रहा है, जो उधार, वो मुझे लग रहा है कि ये वापस कहीं डेट डिफॉल्ट इसमें हो गया तो एक बड़ा क्रैश अमेरिकन मार्केट्स में आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने का समय है जय कुमार जी, पर मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि का जो निवेशक है, 5-10 साल का, उसके लिए मौके भी देती है मार्केट। अगर इस समय वैल्यूएशंस बहुत सारी कंपनीज की अट्रैक्टिव है तो इसलिए इसको मौके की तरह भी देखा जा सकता है, पर उसमें फिर शर्त यह है कि नजरिया लंबे वक्त का होना चाहिए।
3: बिल्कुल। इस बीच दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो
3: जी, अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ नमस्कार सभी को, कोहली सर से। सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार। नमस्कार
4: सर, तबीयत ठीक है? आवाज में आपकी थोड़ी सी,
0: हाँ आवाज थोड़ी भारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी।
4: हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे रिजर्व बैंक की इस मौद्रिक नीति की घोषणा हुई है, जिसमें रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है सवा क्वार्टर पॉइंट, मतलब 0.25% बेसिस पॉइंट बढ़ाया उन्होंने सर
0: जी।
4: तो इससे बैंकिंग सेक्टर में बैंकर लोन ब्याज दर महंगा हो जाएगा रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की
0: जी।
4: तो क्या बैंक आने वाले दिनों में होम लोन, ऑटो लोन में बढ़ाएंगे, ईएमआई लोन का बढ़ सकता है सर? और एक सर टेक्निकल थोड़ा सा पूछना था सर
0: जी।
4: जो गोल्डन ब्रेकआउट होता है सर किसी भी स्टॉक में, गोल्डन ब्रेकआउट
0: जिसे,
4: तो कैसे कब पता चलेगा सर कि ये शेयर में गोल्डन ब्रेकआउट लेवल आने वाली है या उसके आसपास अभी ट्रेड कर रही है? धन्यवाद सर।
0: चलिए, आपने RBI MPC का पूछा। जी हाँ, लोन बिल्कुल महंगे होंगे, क्योंकि जब रिपो रेट बढ़ाया जाता है अमित, तो रिपो रेट वो होता है जिस डेट पर, जिस रेट पर बैंक RBI से उधार लेते हैं। RBI को बैंकर्स बैंक कहा जाता है, तो वो आगे पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को। बिल्कुल आपकी EMIs, और मैं सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि EMI आजकल बढ़ाने का ट्रेंड नहीं है। आजकल क्या करते हैं, वो टेन्योर बढ़ा देते हैं, यानी कि आपने 10 साल का लोन लिया हुआ है तो 10 साल 6 महीने, 10 साल 4 महीने, 20 साल का लिया हुआ तो हो सकता है 21 साल का हो जाए। इस प्रकार की आजकल प्रचलन

0: प्रचलन ज्यादा है, बजाय इसके कि आपकी ईएमआई में बदलाव किया जाए, क्योंकि पीडीसी वगैरह रखे होते हैं। वैसे भी बैंक ये दिखाते नहीं है कि अब महंगा हो गया, जब आपको पता लगता है लोन ज्यादा समय तक चल रहा है तो बिल्कुल महंगा होगा, इस तरीके से होगा या उस तरीके से होगा, बात एक ही है। गोल्डन ब्रेकआउट देखिए पता जब लगता है, जब एक तो स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है और हम लोग जब उसको चार्ट्स पे देखते हैं तो चार्ट्स में जो कैंडल्स हैं वो भी बताती हैं कि गोल्डन ब्रेकआउट हो रहा है। और बढ़िया इसका तरीका वैसे ओपन इंटरेस्ट देखने का है, तो अमेरिकन मार्केट्स में इसको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं, हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे जब देखें निवेशकों का रुझान उस तरफ हो रहा है या कोई बड़ी खबर आने वाली है ऐसी पॉलिसी रिलेटेड उस सेक्टर के लिए, उस कंपनी के लिए, तो उससे भी पता लगता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं अमित, फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें अनुभव प्राची ये भी है कि हर शेयर के लिए गोल्डन ब्रेकआउट का एक ही नियम हमेशा नहीं चलता है। हम लोग किसी किसी सेक्टर में तो दूर से पहचान लेते हैं, किसी किसी में बहुत पास आने में पहचाना जाता है। तो एक जनरल रीजन है, पर आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो समझिए कि
1: मार्केट की समझ होना बहुत जरूरी है इसके लिए।
0: हाँ, पर ये जो हमारे श्रोता हैं अमित,
1: इनकी समझ
0: काफी है, क्योंकि ये निरंतर टेक्निकल सवाल पूछते हैं। ये एफएनओ में भी मैंने इनको देखा है कई दफे पूछते वाला, कि मैंने इनको अलर्ट भी किया है, सावधान ना करिए जी।
2: बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सप्ताह के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार 8 हफ्तों की गिरावट के बाद इस सप्ताह वृद्धि हुई है। पिछले 25 सालों में गिरावट का ये सबसे लंबा दौर रहा। हालांकि रोचक बात यह है कि इस सप्ताह में वृद्धि तब दर्ज की गई है जब वैश्विक बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, विदेशी निवेशक लगातार घट रहे हैं और पश्चिम एशिया में फिर से तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 563 अंक यानी 0.8% बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 99 अंक यानी लगभग 0.5% बढ़कर 22,520 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में मामूली बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में इस सप्ताह 0.5% की वृद्धि हुई। मौजूदा सप्ताह में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखा गया। सभी चयनित कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,00,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 480,00,000 करोड़ रुपये के आंकड़े के ऊपर पहुँच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 43 पैसे कमजोर होकर 96.74 रुपये पर बंद हुआ। और इसी के साथ बेंगलुरु से हमारे साथ एनआर प्रसाद जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। हेलो अनुभा जी, हेलो प्रिया जी,
2: नमस्कार।
3: शरद जी, टू क्वेश्चंस। The stand taken by U.S. firm freeze, whatever it's happened.
0: Yeah.
3: I was expecting the IT sector to hit badly, but all IT sectors rallied yesterday.
0: Yeah.
3: And did a good comeback on this one. Actually, what exactly happened on this, I just want to know.
0: Okay.
3: About that.
0: Okay.
3: My second question is, when market was very down,
0: yeah,
3: I bought 50 shares of a company.
0: Yeah.
3: In that, what happened, 40 got executed, 10 showing as short. All day, next day also it was showing 10 short. Then I got a message saying that it is under auction. No sooner it get auctioned, then you will get back that 10 also. Then after that, that 10 short, what was it was showing, that also vanished.
0: Okay.
3: Then I bought at a specific limit price only. I bought it.
0: Party,
3: yeah, also bought at a limit price. Whatever I put the price at, it was got procured. The 10 shot, it was showing auctioned. No sooner it get auction completed, then you will get. Then I could not make out the actual weighted average rate for that one, at what price it could get. What exactly?
0: All right.
3: 10.
0: All right, I think Mr. Prasad, your first question is relating the PERM, the PERM,
1: yeah,
0: problem. Why did the IT sector rally? Well, we were doing an assessment and we found only 2% of the workforce of these companies effectively gets impacted by this new permanent labor certification problem, the suspension we just put. And you know, H-1B already is under $103,000, fee, so which they haven't stopped. So what these companies do, they take the professionals from here and they work.

0: Because of the bond yields cooling down, yeah. And there was a bond buyback done. In fact, there were disputed numbers on WAB. First, it was thought to be $39 billion, then it was thought to be $22 billion, and finally, $6 billion of bond buyback was done against, but they received $14.9 billion of bids. So that cooled down from 5.36, it came down to 5.22. That led to the rally.
1: Right. Let's move on to oil now. Global crude oil prices rose this week. Brent crude December futures rose 2.4% to settle at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude December futures gained 1.7% to end at $91.01 per barrel. 1 cent per barrel over the week.
2: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस में बने डीजल की बिक्री और आयात पर लगी पाबंदियां अस्थायी रूप से हटा दी हैं। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस तुरंत 3 लाख टन से ज्यादा डीजल की सप्लाई करेगा। इसके बाद नवम्बर में 5 लाख टन, फिर 10 लाख टन और रूसी रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त 30 लाख टन डीजल की सप्लाई की जाएगी। बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका और ग्लोबल मार्केट में रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की प्रस्तावित सप्लाई का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। शरद जी, हम इस पर आपसे कमेंट लेंगे, मगर इससे पहले सेतुपति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: Good evening, Market Mantra team. My name is Sethupathi from Chennai. I have two quick questions, sir.
0: Yeah.
3: Regarding the Starlink from the Mr. Elon Musk,
0: yeah.
3: Is having some barrier inside India. What could be the reason? Is it not the advantages for us? Number two, what is the output of the semiconductor which we are going to get from India? Recently, we started manufacturing. Thank you, sir.
0: All right. Your first question, Mr. Sethupathi, is regarding Starlink barrier. There are two issues which the Honorable Minister of Telecom revealed. One is, of course, the revenue sharing arrangement of those Starlink is being worked out, because this is a different kind of service. 3 licenses have already been given.
1: Yes.
0: One web, Reliance Jio, and of course, Starlink Airtel was the third one. And there's the Amazon Kipiro, which is in the process right now. So one is revenue sharing. Second, you know, satellite phone is something where security becomes an issue. So security compliances have to be looked at. You know, when 2611 there was a satellite call made,
1: yes,
0: which could not be traced. So we cannot allow a service which we cannot trace. You know, anything can happen in a large country like us. So I think that is one reason. Second, your second question is semicon output. You see, the output right now is not being disclosed by the companies. By the end of the year, we might have the first one coming out with something. But all I know is that about 6 of them are in the pipeline, and India is likely to become a dominating power in semicon. We just need to wait for some time for the statistics, Mr. Sethupathi.
1: Prachi. सवाल जानना चाह हम जानना चाह रहे थे जैसे प्राची वॉज ऑल्सो आस्किंग सेइंग शरद जी दैट यू नो द ऑयल प्राइसेस वी जस्ट प्राची रेड दैट यू नो नाउ दिस इज डील बिटवीन द यूएस एंड Russia for the diesel supply of diesel. Do you think it's going to have an impact? Although it's just one part of the crude,
0: yeah,
1: that the deal is about.
0: बहुत ही एक हिंदी में शब्द होता है अनुभव विडंबना, तो बहुत ही उसको इंग्लिश में डाइकॉटमी भी कहते हैं, क्योंकि लिंडसे और ग्रहम बिल जो पेश किया गया भारत के खिलाफ और 4 देशों के खिलाफ लगाने के लिए, और उसमें तो इसीलिए था क्योंकि भारत वहाँ से क्यों तेल लेता है, तो आज जब जरूरत पड़ी तो देखिए अमेरिका को भी जब कीमतें बढ़ने लगी तो अपने लिए सोचना पड़ा और करना पड़ा, तो दुनिया तो हैरान है उनके इस निर्णय से कि जब अपने, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह हैं वहाँ पर, तो वोटर्स नाराज भी हो सकते हैं महंगी तेल की कीमत की वजह से, तो देखिए जब जरूरत पड़ती है तो मैं आगे बोलना नहीं चाहता, पर कुल मिला के बात देखें तो दुनिया के लिए अच्छा है, दुश्मनी तो अच्छी नहीं है, इस प्रकार की खटास कड़वाहट आपस में जल्दी निकले अच्छी बात।
2: Time is a teacher.
0: Yeah.
1: Let's move on. The government is likely to announce a policy on stockpiling of critical minerals within a month, a move which is expected to ensure the supply of these resources to strategic sectors like defense, aerospace and energy, according to Secretary of Mines Keshav Chandra. He said that the government is also working on 4 dedicated critical minerals processing parks across Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Odisha to fast track value addition for key battery materials.
2: 2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह

0: में देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 13 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 734.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा पूंजी लगभग 10.5 अरब अमरीकी डॉलर से लुढ़ककर 604.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गया है। सोने का भंडार 2.2 अरब अमरीकी डॉलर से कम होकर 106.4 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत की रिजर्व स्थिति 15 मिलियन से फिसलकर 4.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गई है। वहीं विशेष आहरण अधिकार 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर लगभग 18.6 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर दर्ज है। और इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए, मगर संक्षेप में, क्योंकि समय की बाध्यता है।
1: जी धन्यवाद कॉलेज, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक हमारा सेविंग अकाउंट है, उसमें अगर एफडी मैच्योर होने के बाद अगर जो पेमेंट है ज्यादा होती है, तो ये बैंक में, अगर बैंक अपने ही बैंक में 5 लाख के ऊपर कोई एक फॉर्म भरा जाता है, ये क्या नियम है इसके ऊपर? क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था जो ट्रांसफर हुई थी पेमेंट, तो हमारी परमिशन फॉर्म होता है, ये क्या चीज का होता है?
2: अच्छा, ये पेमेंट हम ले जा सकते हैं? देखिये केशव जी, जो लार्ज पेमेंट होती है उसको जब ट्रांसफर किया जाता है, तो अब नए नियमों के अंतर्गत वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, और उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए जो बड़ी पेमेंट्स होती है 5 लाख से ऊपर, उस पर जनरली बैंक से एक कॉन्फर्मेशन लेते हैं। आजकल तो आप चेक भी बड़ा इशू करें तो आपको बैंक से पहले उसको प्री ऑथराइज करना पड़ता है, वरना वो चेक क्लियर नहीं होता। तो लार्ज पेमेंट्स पे आगे फ्रॉड को रोकने के लिए और उसकी ट्रैकिंग के लिए केशव जी ये प्रावधान किया गया है, आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है। मुझे लगता है इसमें अल्टी थोड़ा सा हैसल तो होता है, पर कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए।
0: आगे बढ़ते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट प्रारूप इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा। नए प्रारूप के अंतर्गत 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर एमडीआर कैसे काम करता है, तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट के लिए 5 रुपए की फ्लैट रियायती दर लागू होती है। 5 रुपए की फ्लैट फीस पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को टैंक रिफिल करवाने पर ज्यादा लगने वाली प्रोसेसिंग फीस से बचाती है। 2000 रुपए से कम के सभी फ्यूल भुगतान पर 0 एमडीआर रहता है।
3: Let's move on. The Reserve Bank of India, RBI, has said that the banks will need to maintain 99% of the required cash reserve ratio, CRR, daily, starting from October 16th, up from 90% at present. The move follows a review of the current liquidity condition in the banking system and will help reduce the banking system liquidity, which stood at a surplus of around 3.88 lakh crore rupees as of October 20th. October 8th. A very, very quick comment from you.
2: I think as far as the next week's market is concerned, I think if we quickly comment on that, I think the market will wait for what is going to happen on the bond yields. If this again start rising, and the developments in West Asia, of course, will be paramount.
0: Right. Sharad ji, karyakram mein bhaag lene ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
2: Dhanyawad. Thank you so much.
3: And before we close, a reminder of the headlines. Indian stock markets snap their 8-week losing streak. Sensex and Nifty gains around 0.5%. Wall Street wraps up week with notable gains, and global crude oil prices rise during the week. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow, and do remember, listeners, that tomorrow is the day when we will be taking calls from you on any queries that you may have on mutual funds. So do call us then. Till then, from the entire team, goodbye.
0: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
6: நேரம் 11:40. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம்.

पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। पूनमल्ली

0: मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर चालक रहित परिचालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार उन्नत सिग्नल प्रणाली के साथ 3.7 किलोमीटर की डबल डेकर वाली संरचना है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री समुद्री अवसंरचना को सशक्त बनाने, कार्गो निपटान क्षमता को विस्तारित करने और लॉजिस्टिक दक्षता को दुरुस्त करने के लिए तमिलनाडु में बंदरगाह से संबंधी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, गोल चक्कर, झंडेवाला, पचकुइया मार्ग, गोल डाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रिंग रोड, टी पॉइंट और लोधी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिबके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दिबके को उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஆஷுதோஷ் மிஸ்ர. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ एक विशिष्ट 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर संरचना है जो चालक रहित संचालन के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल स्थित 5

और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, गोल चक्कर, झंडे वाला, पचकुइया मार्ग, गोल टाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रोड, रिंग रोड, टी पॉइंट और लोधी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दिपके को और उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ஏன் நோந்து நோந்து

0: நிறைவு பெற்றது நினைவில் நின்றவை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஆஷுதோஷ் மிஸ்ர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अम्बा समुद्रम परमगुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के

0: रिसेंटली
1: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
2: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमानों के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत संस्थाओं स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने CGP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास 5 बारूदी सुरंगों को खोजकर सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। घुसपैठ रोधी प्रणाली के हिस्से के रूप में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण कभी कभी ये प्रणाली बहकर उन स्थानों पर आ जाती है जहां इनसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership and recalled India's efforts during its 2023 G20 presidency to secure permanent membership for the African Union.
4: India and Africa cannot remain unrepresented in global decision making. And that is why India worked resolutely during its G20 presidency in 2023 to secure a permanent membership for the African Union. This decade has seen the UN slide steadily into irrelevance, helpless in the face of major challenges. Our objective is not merely to add more seats around an old table. It is to make global governance more democratic, more responsive, and more representative. And in doing so, make the United Nations itself more capable and more credible.
3: On the final leg of his three-nation African tour, Dr. Jaishankar urged Indian businesses to invest in the continent and called for stronger cooperation in food security, agriculture, and sustainable development. India has said the proposed interim trade agreement with the United States will be finalized in light of changing circumstances. Addressing members of Industry Chamber, PhD Chambers of Commerce and Industry in New Delhi, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the framework announced in February is being reassessed amid changes in the US tariff landscape. He added that India is seeking more favorable tariff terms to ensure its goods remain competitive in the American market. Mr. Goyal said India is simultaneously pursuing trade agreements with several partners, including Israel, Chile, the Gulf Cooperation Council, and

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अंबा समुद्रम परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में

0: संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है।

0: और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करने के लिए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक के मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth Rs 13,000 crore at Chennai today. On arrival by a special IAF aircraft, Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around Rs 4,900 crore. He will also travel in the metro train along with Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay. The Poonamalli-Porur corridor features a unique 3.7-kilometer double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operations. The Prime Minister will undertake a ride on the Chennai Metro from Porur bypass station to Poonamalli bypass station and back. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over Rs 750 crore, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cantonment, Amba Samudram, Parmakudi and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat Station Scheme. Mr. Modi will perform darshan and puja at the Jalkandeshwar Temple near the Porur Lake. Defence Minister Rajnath Singh has emphasised the need to consider the aspirations, needs and changing circumstances of young people while formulating policies for them. Addressing the Narendra Mohan lecture in New Delhi yesterday, Mr. Singh said that the government is moving beyond the concept of policy for youth towards policy by youth and policy with youth in keeping with the changing needs of the times. He said that in a democracy, expressing dissent is a right, but spreading anarchy will not be accepted. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a conference of India's heads of mission in Africa in Addis Ababa yesterday, saying India and Africa share deep linkages built upon Global South solidarity, strategic autonomy, multipolarity and common development aspirations. The conference came a day after Dr. Jaishankar laid out his vision for the India-Africa partnership in an address in the Ethiopian capital. The minister said partnerships of the future must help create capabilities, not promote dependencies, and called for a reformed UN Security Council with fair representation for Africa while speaking on the India-Africa partnership at the Adwa Memorial Museum in Addis Ababa.

नजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। चेन्नई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल को रवाना करेंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुड़ी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारें की योजनाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। फिटनेस युवा

करण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करते हुए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर केंद्रित इस पहल में युवा, आम लोग और खेल जगत की हस्तियां शामिल होंगी। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय साइकिलिंग महासंघ, राहगीरी फाउंडेशन और माई भारत के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। रेलवे ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को